0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।

इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

में शामिल है।

बन के साया मेरे संग रहता है कौन, मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी, वो ख्वाब है या हकीकत है।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

एक कहानी सुनोगे? वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम, सिंपली आफरीन स्वागत करती है आपका राइट हियर ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और एक प्यारी सी कहानी आपको सुबह सुबह सुनाना चाहूंगी मैं। वो कुछ इस तरह से कि एक रेलवे स्टेशन पर लोग इंतजार कर रहे थे। एक की ट्रेन 6:30 बजे आई सुबह के, दूसरे की ट्रेन 7:15 बजे आई, और फिर तीसरे की ट्रेन जो है वो 8:45 AM को आई सुबह। ठीक है, अब कुछ ट्रेन्स फास्ट थी, कुछ ट्रेन्स काफी सारे स्टॉप्स लेते हुए आई, कुछ ट्रेन्स का पूरा रूट ही लंबा था, और कुछ ट्रेन्स जो है वो बहुत दूर के शहरों से आई है। लेकिन यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा वो 8:45 वाली ट्रेन जो सबसे लास्ट में आई कि भाई तुम 6:30 बजे क्यों नहीं आ सकते थे, तुम क्यों इतना लेट आए। क्योंकि लोग जानते हैं कि हर एक ट्रेन का अपना एक रूट होता है, अपना एक डिस्टेंस होता है, वो अपने स्टॉप्स कवर करके आएगी और वो उतना ही टाइम लेकर आएगी। लेकिन एज ह्यूमंस, हम इंसान ये क्यों भूल जाते हैं? सिंपल सी बात, हम किसी और की जब अचीवमेंट्स देखते हैं या फिर उनके माइलस्टोन्स देखते हैं, जैसे कोई घर ले रहा हो, कोई बिजनेस बना रहा हो, कोई कामयाब हो रहा हो, कोई शादी कर रहा हो, और सडनली हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं इन सब में। लेकिन नहीं, आप कहीं पीछे नहीं हो, आपका तो रूट ही अलग है ना। आपने थोड़ी ना कोई और स्टेशन से शुरुआत की थी, ना आपके वो सिग्नल्स थे, आपके ट्रैक्स अलग थे, आपके डिलेज अलग थे, आपका सपोर्ट अलग था, आपके वो तूफान अलग थे, तो आपका अराइवल टाइम उनके साथ ही कैसा हो सकता है? नहीं, शायद आप लेट नहीं, शायद आपका जो रूट है वो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल ही अलग है। तो बस कभी कभार इस कंपैरिजन के पूरे झमेले में या फिर इस ख्याल में आप आ जाओ तो यही याद रखना कि आप लेट नहीं हो, आपका रास्ता अलग है। पर इसी खूबसूरत ख्याल के साथ दिन की शुरुआत करते हुए मैं सिंपली आफरीन माइक से दिल तक राइटर अनमिर्ची आपका स्वागत करती हूँ। बने रहेगा मेरे साथ अनमिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidba la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना,
3: हाँ?
4: धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
3: आपके
1: हो
3: पास
1: क्या है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा? 33501। हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह
3: नहीं तो
1: थोड़ी ना।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
8: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कम है के?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

देखो बचपन में टॉयज यानी इमेजिनरी टॉयज से तो हमने इतने खेले हैं, ये ब्रांड्स एंड्स क्या होता है ये तो हमें पता भी नहीं था। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और बचपन में अगर टॉयज के ब्रांड्स के हमें नाम भी पूछे जाए ना, तो मुझे दो टॉयज के ब्रांड्स पता थे, दैट वाज बारबी फॉर द गर्ल्स, और लड़कों के लिए आई थिंक सो हॉट व्हील्स का बहुत क्रेज था। इसके अलावा डिडंट इवन नो कि यार टॉयज में भी ब्रांड शैंड कुछ होता है। एंड लुक एट टुडे, फास्ट फॉरवर्ड टू दिस डे, जहां पर कतर में फोर्थ एडिशन आ गया है बस, अब कतर्स बिगेस्ट टॉय फेस्टिवल। अब ये जो है ये 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक रहने वाला है DECC में, यानी दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर दिस ईयर्स फेस्टिवल इज द बिगेस्ट येट, कवरिंग मोर देन 22,000 स्क्वायर मीटर ऑफ इंडोर एंटरटेनमेंट। अब दिस जो टॉय फेस्टिवल का जो धमाका है ना, ये सिर्फ DECC तक सीमित नहीं है, इनफैक्ट अक्रॉस द मॉल्स इन कतर हर जगह कुछ ना कुछ एक्टिवेशन चल रहे हैं। लेकिन असली जो मजा है ना, दैट इज हैपनिंग एट DECC, क्योंकि यहां पर ना एक महीने का गजब के फैमिली फन इवेंट्स है। 50 ग्लोबल ब्रांड्स, लाइक आई वाज सेइंग कि हमें सिर्फ दो पता थे, और अब तो भाई न जाने ये बच्चों को कितने सारे टॉयज के ब्रांड्स पता है। एंड दे आर सो क्लियर, एक क्लैरिटी है कि भाई हमें यही ब्रांड का यही वाला टॉय चाहिए, यही वाला कैरेक्टर चाहिए। ओ माई गॉड, ये सब कुछ अगर आपके भाई बच्चे मांगते हैं ना, तो फिर सीधा उठाइए और ले जाइए टॉय फेस्टिवल में, वहां पर जाकर इधर उनको छोड़ दीजिए और उनके पूरे दिलों की अरमान वहां पर पूरी हो जाएगी। देखिए लाइव स्टेज शोज तो है ही वहां पर, कैरेक्टर मीट एंड ग्रीट्स भी है, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस है, इनफैक्ट देयर इज आल्सो शॉपिंग, कॉम्पिटिशंस भी है, थीम जोन्स फॉर ऑल एजेस। डिड यू हियर दैट आई एम टेलिंग फॉर ऑल एजेस, मतलब कुछ ना अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी है वहां पर, आपके अंदर का बच्चा जो है वो जिंदा हो जाएगा वहां पर। वेल अगर एंट्री टिकट्स की बात करें तो 50 कतरी रियाल है वीकडे पर, वीकेंड पर 70 कतरी रियाल है, लेकिन डोंट वरी फैमिली ऑप्शंस है ना, फैमिली पैकेजेस आपको मिल जाएंगे, VIP ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो ये सारी चीजें सॉलिड माहौल बना हुआ है DECC में, तुरंत पहुंच जाइए बच्चों के साथ वहां पर। मीनवाइल मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची, इट्स हॉट

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, साल माझा सोबत तुम्ही पण चला, मतलब आप भी मेरे साथ में यहाँ पर बने रहिएगा. वेल, संजू राठौर की आवाज में ये गाना सुनकर ना मैं भी थोड़ी सी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ और मैं मेरे जरा मुंबई वाले एरा में चली जाती हूँ. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को right here on Mirchi Mornings. And my friends, जरा नजर डालते हैं भाई आज का हमारा तापमान जो है, सलमान क्या कहता है?
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
0: Weather update.
1: Well, weather आज ये कह रहा है 46 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, 34 पर मिनिमम रहेगा. अभी जो महसूस कर रहे हो आप 37 डिग्रीज है और ह्यूमिडिटी जो है वो बिल्कुल कल की तरह ही रहेगी. अब तक ये ह्यूमिडिटी अपने चरम पर पहुंची नहीं है, हवाएं तो बिल्कुल है ही नहीं समझ लीजिए. और जब ये ह्यूमिडिटी कम रहती है ना, हवा में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है यार. और फिर कल से जो मैं छींक रही हूँ ना, सच कह रही हूँ, आज सुबह में सबसे पहले मैं दवाई खाकर आ गई हूँ. एंड दैट्स हाउ आई एम हियर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू यू. वेल, आप भी है कोई मेरी तरह जिसको ना छींके बहुत आती है, जो बहुत एलर्जी से परेशान है हमारे यहाँ के जो कहते हैं ना ये रेगिस्तान की हवाओं के वजह से? लेट मी नो. सर साथ में दर्द बांटेंगे. 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर. लेट्स कनेक्ट हियर. गुड मॉर्निंग, शुड मॉर्निंग भी कर लेते हैं और इस ब्रेक के उस पार मिलते हो राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 3100813.
3: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन?
2: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची. अपना सवाल क्या है वो बता बच्चू.
3: अरे भाई क्या बोलूँ आपको, इधर घर ढूंढना इतना टफ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ?
2: अबे सबसे पहले तो ये बता कि तू किसका घर ढूंढ रहा है, तभी तो हेल्प कर पाऊंगा ना.
4: मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं.

0: वेल आपकी सखी भी यहीं पर है, ड्राई चीयर और मिर्ची सिंपली आफरीन के साथ हो आप और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:02 की तरफ और इस गाने के उस पार लेकर आ रही हूँ फुटबॉल वर्ल्ड कप के स्कोर्स। और कल ऐसा कुछ हुआ जो हमने शायद उम्मीद नहीं की थी, क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे राइट चीयर और मिर्ची। इट्स हॉट
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, my friends, it's getting ruthless. Very good morning and welcome back. Aap sun rahe ho Simply Afreen ko. Right here on Mirchi Mornings and football fans out there. Ab to yaar har stage ke baad ye ruthless hote ja raha hai kyunki ab sirf 8 teams quarter finals mein jagah bana payegi. Ji kal ke round of 16 mein sabse bada shock mila hai hum sabhi ko, and I think so it's quite a pleasant shock. Aisa hona chahiye yaar, matlab jo expected teams agar aage jati rahengi to phir kya maza aayega World Cup dekhne ka, right? To kal kuch aisa hua hai. Norway ne Brazil ko 2-1 se hara kar tournament se bahar kar diya. Oh my God, this is something crazy. Neymar ने stoppage time में penalty से goal जरूर किया, लेकिन comeback के लिए ना देर हो चुकी थी. Well, अब बात करते हैं दूसरे blockbuster के बारे में, जो थी England versus Mexico, जहां England ने Mexico को 3-2 से हरा दिया. मतलब Mexico ने अच्छी खासी अपनी fight तो जरूर दी है, ये बहुत सही बात है. और match के बारिश की वजह से match थोड़ी सी एक घंटा से late शुरू हुई है, लेकिन अब England का अगला मुकाबला होने वाला है Norway के साथ. और आज दो जबरदस्त round of 16 clashes है, एक तो Portugal versus स्पेन और दूसरा जो होने वाला है दैट इज यूएसए वर्सेस बेल्जियम, जहां यूएसए को होम ग्राउंड का सपोर्ट काफी ज्यादा मिलने वाला है. आप देखते हैं भाई कौन बाहर होने वाला है आज. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iskabana, puskabana, sakabana.
3: Rabana.
2: Murga, murga. Na vjet bala murga.
3: Mirchi, murga.
4: Hello.
5: Hello, Tejinder ji.
4: हाँ जी,
5: हाँ जी तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
4: जी, हाँ जी किया था।
5: हाँ, ये तेजेंद्र जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
4: कितना लेट मिलेगा
5: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
4: हाँ जी,
5: एक सेकंड। हाँ इमरजेंसी का है सर, 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
4: 3.5 महीने बाद?
5: हाँ जी
4: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
5: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपके आसपास कोई है तो नहीं?
4: नहीं कोई नहीं है।
5: ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
4: अच्छा।
5: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
4: क्या बोल रहा है भाई, कौन? हेलो।
5: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप बल्कि वो बंदा ही।
4: हेलो।
5: हाँ बोलिए बोलिए।
4: क्या बोल रहा है भाई?
5: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
4: मैं बोल रहा हूँ,
5: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
4: क्या बोल रहा है? क्या
5: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
4: नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
5: यार। आप मेरी तेजेंद्र जी,
4: नहीं
5: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा। 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा 1.5 महीने के लिए। आपका नाम यूज कर रहा है, आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है? क्या गाड़ी यूज कर रहा है वो?
4: नाम बता पहले। कौन रहा है?
5: ये लकी डॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हैं उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, what a song, Shilpa Rao और Carolisa Montero की आवाज में ये गाना Right Here on Mirchi. मैं हूँ आफरीन आपके साथ. और अगर देखो दोस्तों, आप आजकल किसको एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए, और आजकल मैं अगर आप सोच रहे हो कि यार अपनी पर्सनल कार से थोड़ा सा साइड इनकम कर लेते हैं, तो ये आइडिया को थोड़ा होल्ड कीजिए, ये आपको महंगा पड़ सकता है. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. जरा देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर में क्या खबर है.
2: क्या खबर कदर?
1: वेल देखो, खबर ऐसी है दैट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर इशू किया है कि अगर आप अपनी प्राइवेट कार को टैक्सी की तरह कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी लाइसेंस में जो पर्पस मेंशन है उसके अलावा पेड राइड्स देते हैं, तो ये ट्रैफिक वायलेशन है और इस पर लीगल एक्शन हो सकता है. और ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरफ जा रहे हैं ऑफिस के लिए या किसी काम के लिए, तो फिर राइड्स जमा कर लिए और फिर साथ चले गए. ये और इस ये अगर पेड है तो इट्स अ प्रॉब्लम, है ना. तो बॉटम लाइन ये है, अगर आपको लिफ्ट देनी है दोस्त को, कलीग को, फैमिली को, किसी को, बिल्कुल दे दीजिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन प्राइवेट कार को साइड बिजनेस बनाकर पेड टैक्सी सर्विस चलाना, दैट्स वेयर द लॉ ड्रॉज द लाइन. सो वेल, ध्यान रहिएगा बिल्कुल, बिकॉज ये MOI की तरफ से अनाउंसमेंट आई है. मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Dosti kai ko sule madam. No sorry, no thank you.
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा, खूब मिलेगा,
0: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
2: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: विशाल मिश्रा की आवाज जुड़ गई है आपके साथ, ये आवाज जिसका नाम है वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्टरीन का साथ है राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, दिस इज माय फेवरेट सेगमेंट, आई कैन से दिस इज माय फेवरेट टाइम रेडियो के ये पूरे चार घंटे में, जहां पर ना इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, राइट। ऐसे तो मैं यहां पर बैठती हूँ, हर रोज बैठती हूँ और अकेले से बातें करती हूँ ऐसा लगता है कभी कभार, पर लेकिन जब आपके मैसेजेस आते हैं ना इस तरह से तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार सुबह सुबह चलो है हमारा साथ, कोई तो साथ दे रहा है। सो यस, रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेलने का वक्त हो चुका है। सीन सुना रही हूँ और क्या बताऊं, दिस इज माय फेवरेट मूवी, मतलब वन ऑफ द फेवरेट्स, बट हैज टू बी बाय फार, नहीं मैं कुछ ज्यादा ही बोल दूंगी यार, फ्लो में रहने दो आप डायलॉग सुनो उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। सो हियर इट गोज,
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
2: लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार?
3: मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने है ना फैसला किया है।
2: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
3: मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता दूं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना क्या कर सकता हूँ यार।
0: राइट, मतलब ये मूवी का मैं छोटा सा क्लिप भी देखो ना तो आई एम इन स्प्लिट्स, आई लव दिस मूवी। फटाफट से बताओ चलो 5000 1896 कौन सी मूवी है ये, ठीक है। एंड इसमें दो दो जो कैरेक्टर्स है ना दे आर माई फेवरेट्स, मतलब बॉलीवुड में कॉमेडी की बात हो ना बड़ा मजा आता है कि कॉमेडी और स्क्रीन टाइमिंग देखने का। मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगी, चलो चलो चलो, बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और चलो इतना मैं कह सकती हूँ कि आप जो लिख रहे हो ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 क्या है वो तो बताओ मुझे। नाम तो आप बता रहे हो पर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, असीस कौर की आवाज में माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
2: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
1: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
3: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
4: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
5: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: Mirchi Mornings, brought to you by KIMS Health Medical Center.
1: Well, Mirchi Mornings पर आपका स्वागत है अंकित तिवारी और अरिजीत सिंह की आवाज में. ये गाना सुना आपने right here. हाँ जी, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था यहाँ. और क्या बताओ भाई, एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठे हैं यहाँ पर, हमें सुन रहे हैं. बॉलीवुड के ऐसे फैंस हैं कि मैं ऐसा कोई डायलॉग सुनाती हूँ कभी कभार जो बिल्कुल फेमस नहीं होता है, मतलब ऐसी जस्ट एक क्लिप होता है कोई मूवी से और आप यूं पहचान लेते हो, जैसे ये वाला डायलॉग था.
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
2: लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार?
3: मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने ना फैसला किया है.
2: करेक्ट फैसला किया. तू कुछ नहीं कर सकता.
3: मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. मैं कुछ नहीं कर सकता. अब मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं. मैं ना क्या कर सकता हूं यार.
1: ऑलराइट, क्या कर सकते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप कुछ कर सकते हो. जो है इसका मैसेज देना है तो भाई मुझे अभी यहाँ पर व्हाट्सएप करो 5000186. आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, बट इज इट वन, इज इट पार्ट वन, टू या थ्री. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. लेट मी टेल यू, बहुत सारे ना गलत मैसेज भी आए हैं. वो क्यों बोलिए, क्योंकि यहाँ पर चलो पहले तो मैं बता दूं ये मूवी का नाम क्या है. देखो मूवी का नाम इज गोलमाल वन. ठीक है, अब आपको इतना तो समझना चाहिए था कि इसमें जो आवाज़ है अरशद अरसी की, ये तो आप समझ गए थे, लेकिन साथ में जो आवाज़ थी वो शर्मन जोशी की थी. और गोलमाल के जितने भी सीरीज आए हैं ना, उसमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट में ही, गोलमाल वन में ही शर्मन उनके साथ में थे. एंड बहुत सारे आंसर्स आए यहाँ पर. कोई कहता है धमाल, देन यहाँ पर डबल धमाल, गोलमाल रिटर्न्स. नहीं, यहाँ पर चाली का मैसेज आया है, त्रिशा का मैसेज आया है जिसने बिल्कुल सही कहा है. एंड देन आई हैव योर मोस्ट ऑफ देम सेइंग गोलमाल थ्री. महबूब शरीफ है, देन नीरज है, सबका कहना है कि ये गोलमाल थ्री है. लेकिन नहीं बॉस, गौरव ने यहाँ सही जवाब दिया दैट दिस इज द फर्स्ट पार्ट. देन आई हैव समवन हियर, इनका नाम यहाँ लिखा नहीं है. ताहिर अली का भी बिल्कुल मैसेज आया कि दिस इज द फर्स्ट गोलमाल आफरीन, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट जिसने ये कहा है. सो विद दिस, जिन्होंने भी सही जवाब दिया है आपके लिए, चलो तालियां तो बजनी चाहिए, क्योंकि यस ट्रिक ये था कि ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ये नहीं समझ आ रहा था आपको. So, जहां अर्शद वारसी की मैंने बात छेड़ी है, लेट मी टेल यू द फाइनेस्ट एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री कैन एवर हैव इज अर्शद वारसी. और अर्शद खुद कहते हैं कि भाई मैंने ना इतना सोच के एक्टिंग नहीं की कभी, कि मैंने कभी कोई वर्कशॉप्स अटेंड नहीं किए, कि मैंने कोई इतनी मेहनत, मतलब इतनी कोई तैयारी नहीं की. जैसे होते किया मैं करते गया. मतलब आए तो थे ये कोरियोग्राफर बनने के लिए, लेकिन ये जिंदगी कहते हैं ना, डेस्टिनी इन्हें कहीं और ही लेकर चली गई. और आज बात मैं इसलिए कर रही हूँ, नहीं उनका बर्थडे नहीं है, क्योंकि थोड़ी ही देर में एक मैं ऐसी सीरीज बताने वाली हूँ अरशद वारसी की, विच आई थिंक सो ऑल द अरशद वारसी फैंस आउट देयर, जो उनके कॉमिक टाइमिंग के फैंस हैं, उन्होंने मिस नहीं करना चाहिए. और ये कौन सी सीरीज है, बहुत मजे की है. यू गॉट टू स्टे ट्यून विथ मी, बिकॉज इस गाने के उस पार और एक गाने के उस पार, मतलब दो गाने के पार, मैं आऊंगी और बताऊंगी आपको मैं किस सीरीज की बात कर रही हूँ. राइटर अनमर्ची माइक सदुल तगाफरीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: वेलकम वेलकम जी, आप सीन है आपके साथ। वेलकम टू द जंगल का गाना अभी आपने सुना राइट हियर ऑन मिर्ची। और व्हाट अ कियोटिक स्टार कास्ट आई वुड से। लेकिन भाई ठीक है, अक्षय कुमार है तो कहीं ना कहीं आई थिंक सो मूवी को संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब वो कितनी कोशिश की कामयाब हो रही है ये तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ही बताएगा। वेल वेलकम। और ये जिस तरह से मल्टी स्टार कास्ट की एक मूवीज होती है ना, वैसी ही और मूवी एक आ रही है, दैट इज धमाल 4। ठीक है, एंड धमाल 4 इज कमिंग नेक्स्ट वीक, दिस वीक आई मीन ये जो वीकेंड आएगा तब भी आएगी। सो बस यू गॉट टू पिक योर चूज के वेलकम के लिए जाना है या धमाल 4 के लिए जाना है। लेकिन एक जो चीज़ है, अगर आप ये कैटेगरी में आते हो कि भाई आफरीन ऐसा कुछ बताओ ना जो हम घर में देखकर एंजॉय करें, और अच्छी वाली कंटेंट और अच्छी वाली चीज़, और ऐसा एक एक्टर जो ये दोनों मूवी का हिस्सा रह चुके हैं और OTT पर भी कमाल कर रहे हैं, किसकी बात कर रही हूँ बताती हूँ थोड़ी देर में। तब तक के लिए यार अगला गाना यहाँ पर आपको सुनाती हूँ। उससे पहले मिर्ची घड़ी का इशारा भी बता देती हूँ। सुबह के 8:05 की तरफ है मिर्ची घड़ी का इशारा, एंड प्लेइंग नेक्स्ट ट्रैक वन ऑफ माई फेवरेट अभय जोधपुर की आवाज में ऑन मिर्ची थॉट।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
2: वो

देखिए, बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जो एफर्टलेसली कॉमेडी करता है और एक ऐसा डायरेक्टर जो उसकी कॉमेडी को बिल्कुल सही डायरेक्ट करता है, और ये दोनों अब एक साथ आ गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स। और बॉलीवुड में कई सारे कॉमेडियंस हैं यार, लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट्स इज अरशद वारसी। एंड दिस टाइम अरशद वारसी एक नए अंदाज में आए हैं विद अ वेब सीरीज प्रीतम पेड्रो के साथ। वेल, एक तरफ है पेड्रो गोवा क्राइम ब्रांच का कॉप, जिसे साइबर क्राइम सेल में ट्रांसफर किया जाता है, और दूसरी तरफ है प्रीतम, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइबर जीनियस जो असली जिंदगी में वैक्यूम क्लीनर्स बेचता है। अब दोनों मिलकर ना एक मिसिंग बॉय और साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अब इस पूरे इसमें मजे की बात यह है दैट दिस इज अ राजू हिरानी, मतलब यार राजकुमार हिरानी का है ये, एंड इट इज द फर्स्ट टाइम दैट राजू इज एंटरिंग दिस OTT for it, and it's gonna be exciting because we know how his thinking is, kitni बहुत ही स्मार्ट थिंकिंग है राजू की। अगर आप अलग रहो मुन्ना भाई देखे, मुन्ना भाई MBBS देख लिए, थ्री इडियट्स देख लिए, और हर जगह ना थोड़ा सा एक टच जो रहता है ना इनका, एक एक्स फैक्टर अलग रहता है। एंड नाउ व्हेन इट कम्स दैट अरशद वारसी को मेन लीड में लेकर ये कुछ कर रहे हैं, तो कुछ कमाल ही कर रहे हैं। वेल, पेड्रो के किरदार में आपको अरशद तो नजर आएंगे, लेकिन लेकर चलना चाहूंगी आपको एकदम पीछे, जब मुन्ना भाई आई थी, और मुन्ना भाई जब, वी ऑल नो दिस मूवी एकदम स्टार्ट से एंड तक, जब लास्ट के सीन्स थे ना, जब दिखाया गया कि सर्किट की शादी हो गई है और गोद में एक बच्चा है और बीवी है, यू रिमेंबर दैट सीन है ना, फोटो दिखाया गया है, उसमें जो बच्चा गोद में रहता है वो राजकुमार हिरानी का ही रहता है। एंड नाउ इतने साल बाद वो बच्चा बड़ा हो गया है, नाउ इन दिस सीरीज ये पेड्रो प्रीतम में प्रीतम का किरदार मेन लीड राजू का बेटा कर रहा है, वही लड़का। आई मीन लाइफ इज अ फुल सर्कल, यू सी वॉस। वेल, जियो हॉटस्टार पे ये है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, और कॉमेडी तो भरपूर है। अब ये कैसा हो सकता है भाई, ये सिर्फ अरशद वारसी ही कर सकते हैं। 6 एपिसोड्स का ये है, मजे का है, जस्ट रिलैक्स्ड वॉच है, एंजॉय इट। प्रीतम पेड्रो डिजर्व्स अ चांस आई फील। मैं हूं आफरीन आपके साथ, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La vieta la burka. Mirci, burka.
2: Hello.
3: Hello, sir. Very good evening. सेल्यूलर से बोल रहा हूँ सर, हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
2: अच्छा,
3: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
2: के पास है क्या ये सर्विस?
3: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
2: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
3: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
2: ठीक है,
3: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
2: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
3: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
2: ये क्या है भैया?
3: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
2: तुम्हें मशीन चलाने आती भी है?
3: सर मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
2: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
3: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
2: मजाक कर रहे तू मेरे से?
3: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं इतनी।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
3: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डबोगे।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
6: it's hot.
7: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
8: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
9: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
5: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
5: FM, Mirchi 1. It's hot.

यशिता शर्मा फरहान अख्तर की आवाज में वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स यार एंड फेवरेट मूवी आई वुड से दिल धड़कने दो से ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची और जब आई हूँ इस वक्त पर तो काम की बात लेकर आऊंगी जाहिर सी बात है सो ब्रिंगिंग टू यू आईपे के एक्सचेंज रेट्स आज के लिए वेल 6th ऑफ जुलाई के आज के एक्सचेंज रेट्स आईपे की ये कहता है कि दरें खतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 26.11 वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीस आपको 76.55 मिल रहे हैं बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 33.93 की तरफ है और अगर श्रीलंकन रुपीस की बात करें तो 91.84 पर है नेपाली रुपीज 41.76 ये थे आज के एक्सचेंज रेट घर भेजे पैसे ढेरों सारी खुशियाँ खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 89.6 FM पर माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा इट्स हॉट

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद इरशाद।

0: IBE payments ka wah tarika. With IBE, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IBE app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IBE, smaller fees, bigger smiles. TNC apply. कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
0: अभी कॉल करें 3100813।
2: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
3: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
4: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, मिर्ची वन।
6: It's hot.
7: ओ देखो हो गया फेर, खेल हो गया शुरू, देखो कि मैं जा रहे हैं।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल, ज्योति और सुल्ताना की आवाज में ये ओरिजिनल गाना तो सुना था हमने, लेकिन इसमें दिलजीत पांची का जो एक तड़का है ना यार, ये बड़े मजेदार है। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड इस गाने के उस पार लेकर आ रही हूँ आपके लिए गेम, तो तैयार है ना आप? वेल, प्लेइंग वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स वरुण जैन और शिल्पा राव की आवाज में ये गाना
2: फिर से
1: खास आपके लिए ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हम तो हर रोज मिलने का वादा करते हैं और हर रोज यहाँ आ भी जाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और भाई साहब, यहाँ पर वो वक्त हो रहा है जहाँ बॉलीवुड के फैंस ना सब इकट्ठा हो जाते हैं, तो बस चलिए वक्त हो गया है तो फिर गेम भी खेल लेते हैं। चलिए, एक ऐसे आर्टिस्ट की आवाज़ आज मैं सुनाने वाली हूँ, उनकी इंटरव्यू की आवाज़ है। आपने गेस करना है कि यार आफरीन आज किसकी आवाज़ सुना रही है। सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाय और ध्यान से आवाज़ सुनो।
1: सीन क्या, फॉर्मूला क्या है?
2: नहीं, वो मैं कल खटाना साहब थोड़े ज्यादा बोल रहे हैं उसमें। ऐसा नहीं होता है, जैसे कि मैंने डूबा डूबा गाना बनाया, कई लोग मुझे पूछते हैं कि यू नो यू प्रॉब्ली मेड दैट सॉन्ग फॉर समवन, या कोई था या कोई नहीं मिला या कोई मिलना चाहते थे।
1: नाउ यू कैन से ओ फॉर हर।
0: ऑलराइट, कौन है ये, किसकी आवाज थी ये, बताइए मुझे। 5000196 इन्होंने खुद ने ही इतना बड़ा हिंट दे दिया है इसमें। एंड व्हाट अ फेनोमिनल टैलेंट ही हैज। कौन है ये आप बताओगे? 5000196। तब तक के लिए अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है राइट ऑन मिर्ची। और अनिल कपूर क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये सुनते हैं ऑन मिर्ची थॉट।
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
5: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके इट शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स I feel is the mantra for your fitness. You do everything, but do it in moderation, and do it what makes you happy.
4: Health tip आपने दिया एकदम class, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची It's on.
3: Bollywood bol dal, Bollywood Bollywood Bollywood bol dal. Only on Mirchi It's hot. A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार gold and diamonds, golden summer के साथ पाइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
7: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
8: बार बार।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन।
11: इट्स हॉट मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Well, आज आफरीन ने अच्छा खासा कंफ्यूज किया है. ऐसे कह रहे हैं ना आप बिल्कुल. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स. और हाँ जी, कंफ्यूज करने का इरादा ही तो था आपको. भाई इतना भी इजी इजी सवाल पूछो तो आप कहते हो कि भाई आफरीन यार ये क्या इजी सवाल है, कुछ अच्छा सा डिफिकल्ट सा पूछो. तो ये लो, देखो एक आवाज़ मैंने सुनाई थी एंड ही इज़ क्वाइट पॉपुलर जिसकी आवाज़ मैंने सुनाई है. लेकिन क्या वजह हो गई कि आप इसे बराबर पहचान नहीं पा रहे हो? है एक यहाँ पर, किसी ने पहचाना है, उनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे. लेकिन अभी आप सभी लोग सुनो, एकदम ध्यान से सुनो और कान लगा के सुनो.
1: नहीं, वो मेरे को खटाना साहब थोड़े ज्यादा बोल रहे हैं उसमें. ऐसा नहीं होता है. जैसे कि मैंने डूबा डूबा गाना बनाया, कई लोग मुझे पूछते हैं कि यू नो यू प्रॉब्ली मेड दैट सॉन्ग फॉर समवन, या कोई था या कोई नहीं मिला या कोई मिलना चाहते थे. लेकिन जब ये गाना बना था तो कुछ भी ऐसा नहीं था. आई थिंक इट वाज जस्ट माय पैशन एंड लव फॉर Something in my mind, basically.
0: कौन है ये और क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं बताइए मुझे. देखिए बहुत सारे आंसर्स आए हैं. किसी ने करण जौहर कहा, किसी ने फरहान अख्तर कहा, तो किसी ने यहाँ पर लकी अली कहा. लेकिन एक है विवेक जिन्होंने सोचने के बाद खूब ये कहा कि आफरीन आई थिंक सो ये जो आवाज़ है ये तो मोहित चौहान की आवाज़ है. ऑफ कोर्स मोहित चौहान की आवाज़ थी ये जिन्होंने डूबा डूबा गाना गाया है. उन्होंने खुद ही तो बताया उनकी आवाज़ में अभी फिलहाल. एंड व्हाट एन आइकॉनिक सॉन्ग या डूबा डूबा, एक ऐसा गाना जब हमने देखा था 90s में अंडर वाटर शूट किया गया था ये गाना एंड इट वॉज सो फैसिनेटिंग. अब याद आया आपको? माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मिर्ची सॉरी.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: हमारी काम वाली बाई बहुत इरेगुलर है, हर दूसरे दिन नहीं आती, क्या करूं?
1: वेल इट्स सो सिंपल यार, हर दूसरे दिन नहीं आती ना, तो उसको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम पे रखा कर। या इट्स जस्ट अमेजिंग, फैंटास्टिक, सिंपल।

Well, my friends, it's getting ruthless. Very good morning and welcome back. Aap sun rahe ho Simply Afreen ko. Right here on Mitchy Mornings and football fans out there. अब तो यार हर स्टेज के बाद ये रुथलेस होते जा रहा है क्योंकि अब सिर्फ 8 टीम्स क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना पाएगी. जी कल के राउंड ऑफ 16 में सबसे बड़ा शॉक मिला है हम सभी को, एंड आई थिंक सो इट्स क्वाइट अ प्लेजेंट शॉक. ऐसा होना चाहिए यार, मतलब जो एक्सपेक्टेड टीम्स अगर आगे जाती रहेंगी तो फिर क्या मजा आएगा वर्ल्ड कप देखने का, राइट? तो कल कुछ ऐसा हुआ है. नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. Oh my God, this is something crazy. नेमार ने स्टॉपेज टाइम में पेनल्टी से गोल जरूर किया लेकिन कमबैक के लिए ना देर हो चुकी थी. वेल, अब बात करते हैं दूसरे ब्लॉकबस्टर के बारे में जो थी इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको, जहां इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया. मतलब मेक्सिको ने अच्छी खासी अपनी फाइट तो जरूर दी है, ये बहुत सही बात है. और मैच के बारिश की वजह से मैच थोड़ी सी एक घंटा से लेट शुरू हुई है, लेकिन अब इंग्लैंड का अगला मुकाबला होने वाला है नॉर्वे के साथ. और आज दो जबरदस्त राउंड ऑफ 16 क्लैशेस है, एक तो पोर्टुगल वर्सेस स्पेन और दूसरा जो होने वाला है दैट इज यूएसए वर्सेस बेल्जियम, जहां यूएसए को होम ग्राउंड का सपोर्ट काफी ज्यादा मिलने वाला है. आप देखते हैं भाई कौन बाहर होने वाला है आज. माइक से दिल तक आप स्ट्रीम के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए
3: सर, हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्ज
4: सर, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ सर, मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ आपसे, रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, अब मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
12: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
13: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
14: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
15: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
16: 89.6
17: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: अगर आपको फिर से समझ लीजिए स्कूल जाना पड़े तो आप फिर से सुबह सुबह उठकर जाना पसंद करोगे या शाम की क्लास? पर हमेशा से ना बचपन से मुझे लगता है कि भाई क्यों सुबह इतना जल्दी उठना पड़ता है स्कूल के लिए फिर काम के लिए। और आप तो देखो, मैं तो मॉर्निंग शो भी करने लग गई और मेरा सुबह की नींद के साथ प्यार ना एक अलग ही लेवल का है। वेल, मजाक एक तरफ, लेकिन सीरियस बात की तरफ जरा चलते हैं।
2: क्या खबर कदर?
1: खबर कुछ ऐसी है दैट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्राइवेट स्कूल्स में इवनिंग स्टडी सिस्टम का एक्सपेंशन जो है अनाउंस किया है। अब 37 प्राइवेट स्कूल्स और ब्रांचेस इवनिंग क्लासेस ऑफर करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन करिकुलम स्कूल्स इस इनिशिएटिव का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसके बाद ब्रिटिश और दूसरे इंटरनेशनल करिकुलम। सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट का हेल्थ इशू हो या किसी फैमिली की वर्क शेड्यूल अलग हो या किसी बच्चे को ट्रेडिशनल क्लासरूम टाइमिंग सूट ही ना करती हो तो उनके पास अब ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन भी होगा। और एक एंगल अगर इसका देखें तो कदर की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, नए स्कूल्स बनाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन एग्जिस्टिंग कैंपसेस को इवनिंग में यूज करना इज अ स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सेम बिल्डिंग्स, डबल अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स कॉल्ड वर्किंग स्मार्टर, नॉट जस्ट बिगर। मैं हूं आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा

0: गुस्सा।
1: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
2: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
1: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
3: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं।

0: देखिए, हम सब जिंदगी भर एक अच्छे घर के लिए मेहनत करते हैं, बड़ा घर, खूबसूरत सा घर। लेकिन एक बात बताइए, मकान और घर में फर्क क्या है? ये फर्क मैं आपको बताऊंगी। दीवारें, छत और दरवाजे मिलकर मकान बनाते हैं, लेकिन घर तो किसी अपने की मुस्कुराहट से बनता है। और आज मेरी डायरी से चंद लाइंस इसी बात पर।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, सफर कितना भी लंबा हो थकान रहती नहीं बाकी। जहां तुम मुस्कुरा देते हो वही घर सा लगता है।

चाहे आप जितना भी घूमे फिरे, जितनी भी शहर चले जाए, लेकिन जब आप लौटते हो ना अपने घर, वो इंसान के पास, वो भले ही आपके माँ बाप क्यों ना हो, आपका हम सफ़र क्यों ना हो, आपके बच्चे या फिर वो एक दोस्त, जिसके पास बैठते ही दिल को सुकून मिल जाए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो सिर्फ अपनी मौजूदगी से मकान को घर बना देता है, तो यकीन मानिए आप वाकई बहुत खुशकिस्मत है। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। अनमिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री।
3: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन। ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट। ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट।
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम। अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Our business is our business, none of your business.
5: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
6: Qatar का number one radio station.
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो बॉस, ये जाने अनजाने में कंपैरिजन के शिकार हम सब बन ही जाते वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफ्टरनून है आपके साथ। और जाते जाते एक बड़ा ही खूबसूरत सा ख्याल आया है। जब मैं इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रही थी, और अक्सर यह दिखता है ना कि यार दूसरों की जिंदगी पूरी दिखाई देती है आपको इंस्टाग्राम पर, और इस वजह से ना बहुत सी मुश्किलें आ जाती है कि भाई लोग कंपेयर करना लगते हैं फिर अपनी जिंदगी उनकी जिंदगी के साथ। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि भाई कंपेरिजन करना है ना तो फिर किसी की खुशियों के साथ मत कीजिए। अगर किसी और के साथ करना ही है ना तो उनके प्रॉब्लम्स के साथ कीजिए। वो लोग जो जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, इतनी हिम्मत के साथ कर रहे हैं, तो बस ऐसा सोच लीजिए जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने खड़े हो जाए ना तो किसी और की बड़ी प्रॉब्लम के साथ कंपेयर कीजिए कि अरे यार उनकी जिंदगी में तो इतने प्रॉब्लम्स हैं और हमारे सामने ये पहाड़ आके खड़ा है, तो बस कोई नहीं यार पार हो जाएगा। अब यार बहुत हिम्मत मिलती है, यकीन मानो। चलिए इस खूबसूरत ख्याल के साथ मैं लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द राइट हियर सेम शो माइक से दिल तक आफरीन के साथ। टाटा बाय बाय सायोनारा। अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहेगा मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो नींद आ जाती है।
2: क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
0: क्या करूँ?
1: अरे घोचू, तो लेटे लेटे पढ़ना, अच्छे से सो भी पाएगा रे तू।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: आर का दम।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसन टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आर्य अंशु विद यू। जब चार दिग्गज एक साथ आए तो बताएं, ऐसे गाने से इंसान को इश्क ना हो तो फिर क्या ही हो। चार दिग्गज यानी कि आप चार एक्टर्स की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो हैं, लेकिन आफीन हम इस वक्त किसी और की बात कर रहे हैं।
2: यस, जब मैं गाना ये सुनी रही थी, मैंने बोला अंशु दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट सॉन्ग, जब चार बड़े सिंगर्स कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, मतलब 90s के ये जेम्स एक साथ एक ही गाने में। वाओ,
0: क्या बात यार। मतलब जरा सोचो कि म्यूजिक कंपोजर में क्या दम है कि भाई चार लेजेंड्स को एक साथ इसने लाके खड़ा किया। लेकिन इसके अलावा अगर फिल्म की भी बात करें आफीन, 90s के एरा में अगर आप रोम कॉम की बात करें, भाई ये एक ऐसी फिल्म है जिसे हमने ना जाने कितनी बार देखी होगी। एंड मुझे याद है कि हर एक सैटरडे को किसी ना किसी टीवी चैनल में ये फिल्म जो है वो जरूर आती थी।
2: बहुत ही फनी मूवी थी। आमिर खान, जूही चावला, अजय देवगन एंड काजोल। एक अच्छा एक मजेदार ट्रिविया यहाँ पर ऑन दिस नोट मैं सुनाना चाहूंगी, नॉट रिगार्डिंग दिस मूवी बट रिगार्डिंग जूही चावला, कि जूही चावला ने खान्स के साथ काम किया है, आमिर एंड शाहरुख की तो बेस्ट फ्रेंड है।
0: एब्सोल्युटली,
2: डू यू नो दैट सलमान एंड जूही हैज नेवर कम टुगेदर एज अ पेयर इन अ लीड
0: ऑन स्क्रीन। कभी कभी सलमान एंड जूही चावला का। एंड पता है तुम्हें ये बात एग्जैक्टली मैंने कब महसूस की थी, जब बिग बॉस के एक सेगमेंट में जूही चावला आई थी, एंड दैट्स व्हेन दे वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, एंड सलमान ने कहा था कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि उस दौर पे जब फिल्में इतनी अच्छी चल रही थी मुझे जूही चावला के साथ काम करने का मौका नहीं मिला।
2: और मजे की बात यह है कि सलमान ने जूही के फादर से जूही का हाथ मांगा था।
0: क्या बात
2: जो मना कर दिया गया
0: फॉर ऑब्वियस रीजन। बढ़िया यार, चलिए इसी के साथ जो वक्त है काफी कमाल हो चला है। मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:07।
3: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: सुबह सुबह आपकी जिंदगी में बॉलीवुड का तड़का, बॉलीवुड का एक खास डोज तो जो है हम जरूर लेकर आए। लेकिन अगर आप 90s के मूवी लवर्स हैं, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी कि वो कौन सा ऑन स्क्रीन डुओ था जो 90s की फिल्मों में काफी नजर आया करता था एंड जो आपका सबसे फेवरेट था, चलिए बताइए। एंड उनसे जुड़ा हुआ अगर कोई गाना होगा तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। एंड आफरीन, यू हैव गॉट समथिंग टू से?
2: यस, अगला गाना जो है ये मेरा फेवरेट गाना है आपके लिए, राइट हियर,
0: अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में। व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज यार, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hi, ye call बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
5: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
3: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए.
5: 33501.
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला.
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
6: हाय.
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए.
5: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड.
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर.
7: ये बेल जा रही है.
5: हेलो भैया. हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ. आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये आपके
5: पास
3: है?
5: आपके पास पासवर्ड होगा? 33501. हाँ सर, 33501.
3: हेलो.
5: हाँ जी सर. सर यही पासवर्ड है. मेरी बात सुनिए ना.
3: किस से पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपके पास.
3: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
5: ये. एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना होता है.
5: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था. बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते.
8: विके, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है. 33501.
3: किसने दिया मेरा नंबर?
8: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था.
3: अरे कुकड़ू को.
9: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
10: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
11: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
12: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
13: हिट गाने
14: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
15: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: फाइटर फिल्म से ये एक ऐसा पावर पैक गाना है जो सिर्फ आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा नहीं बनता बट जेन्युइनली आपका पार्टी का जो मूड है ना वो सेट करने में बहुत बड़ा काम करता है।
1: मिर्ची अंशु
0: Welcome back, you're listening to Meethi Mirchi and this is Ajay Anshu with you. Fighter film se Vishal Shekhar ki a composition. And sabse badi baat ye hai, Benny Dayal and Shilpa Rao ki energetic vocals ne is gaane ko sirf ek dance number nahi diya tha. Lekin agar film ke one of the attractions ki baat karo, to usme ye gaana jo hai, wo zaroor isne bada role play kiya. Waise, Siddharth Anand ko agar aap dekhne ki koshish karenge, to bhai ye film ek bar phir se unka successful collaboration lekar aaye Vishal Shekhar ke saath. Aur yaar, inhone pehle bhi kitni saari filmon mein saath kaam kiya hai. Aur har ek film ka gaana jo hai na, इट वॉज अ चार्ट बस्टर हिट फिर चाहे आप बैंग बैंग की बात करें वॉर की बात करें पठान की बात करें सिद्धार्थ आनंद एंड विशाल शेखर ये डुओ जब जब आए ना भाई फुल ऑन पार्टी मोड हमारी लाइफ में साथ लेकर आए वैसे पार्टी मोड की बात करूं तो ये काम इस वक्त मैं आपकी जिंदगी में जरूर करने वाली हूं हाँ जी इस वक्त अगर आप दोहा कतर को देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी खास एंड इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो वो हो रही है हाला सिमर ये कैंपेन जो है कतर में शुरू हो चुका है जिसके चलते बहुत सारे कैंपेन्स ऐसे हैं जहां पे बच्चों के लिए फ्री एंट्री तो है लेकिन बच्चे बूढ़े और जवान सबके लिए कुछ ना कुछ एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग जरूर है अब इसमें से एक ऐसे इवेंट की बात करें जो कतर में इस वक्त दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है जो आप जानते हैं सो दैट इज किड्स टॉय फेस्टिवल विच इज बेसिकली कतर टॉय फेस्टिवल एंड ये चलने वाला है 31st ऑफ दिस मंथ एट दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर लेकिन अगर इसके एक्सटेंशन की बात करूं तो इस बार टॉय फेस्टिवल के एक्टिवेशंस जो हैं कतर के बहुत सारे मॉल्स में भी हो रहे हैं एंड ये चलेंगे कुल मिलाकर सितंबर तक जहां पे बच्चों की एंट्री जो है वो पूरी तरह से फ्री है एंड बिलीव मी और नॉट इतनी एक्साइटिंग एक्टिविटीज है ना कि बच्चों को एक डेढ़ घंटे तक एंगेज करने का सॉलिड जरिया अगर आपको मॉल्स में शॉपिंग करने जाना है तो आपको मिल ही जाता है तो यहाँ पे पते की और काम की बात मैंने समझा दी बाकी तो समझदार को इशारा काफी वेल इस वक्त अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो फटाफट से गुड मॉर्निंग मैसेज हो जाए 5000 1896 5000 1896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु मीनवाइल उदित नारायण की आवाज में अगर फिर से 90s के मैजिक में डाइव इन करते हैं ये अगला गाना आप तक पहुंचाते हैं एंजॉय बंदी का नाम अंशु

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

उसकी किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Well, बादशाह अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट गाने हैं जो सुनने में ना काफी सूदिंग लगते हैं, जिन्हें आप बार बार भी सुने ना तो भी आप कभी लाइफ में बोर नहीं हो सकते। एंड मेरी जिंदगी में ये गाना जरूर है।
1: मिर्ची अंशु
0: जिंदगी में मिठास एंड स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड पता है क्या, बचपन की कोई बात है जो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके बीच दोहराई जाए। अगर मैं अपनी जिंदगी को देखने की कोशिश करूँ ना, तो मैं अगर सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड किसी से हूँ तो वो है मेरे पापा। चलते फिरते उठते बैठते, या यूं कहूं कि जब जब मैं जिंदगी में सांसें भी अगर लेती हूं, तो मुझे अगर किसी की बात याद हो या ना हो, लेकिन एक शख्स जो हर पल मेरी सांसों की तरह मेरे साथ होते हैं, तो वो है मेरे पापा। आज फिजिकली शायद वो मेरे साथ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में, आसमान में, ऊपर जहां पर भी है ना, उनका साथ मेरे साथ हर पल बना हुआ है। पता है, उन्होंने मुझे लाइफ की एक बहुत अच्छी बात सिखाई। हम अक्सर कई मुद्दों को लेकर, कई बातों को लेकर जिंदगी में परेशान होते हैं कि घर में किसी ने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे ये कहा, मेरे साथ ऐसा हुआ, बाहर दोस्तों ने मुझे कुछ ऐसा कहा, मैं ऐसी हूँ नहीं लेकिन मेरे बारे में ऐसी बातें की गई, ऑफिस में मेरे साथ ऐसा होता है, वर्क का प्रेशर ऐसा होता है, अप्रिशिएशन नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल थिंग्स। अपना इस बात में मेरे पापा अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम्हारी लाइफ में जो कोई भी है ना, चाहे तुम्हारे करीब से करीब के रिश्तेदार भी क्यों ना हो, वो हर कोई तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा है। तुम्हारी जिंदगी जो है वो तुम खुद हो। अगर तुम्हारा काम है तो तुम्हारा काम भी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। और रही बात किसी के तुम्हें परेशान करने की या नहीं करने की, तो एक बात याद रखना, जब तक तुम किसी को मौका ना दो कि वो तुम्हें परेशान कर सके या बुरा कह सके, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। क्योंकि जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो तुम्हारे पास है, और वो ताकत अगर कुछ है तो वो है तुम्हारी खुद की सोच। तो किस बात को अच्छा लगाना है, दिल पे लगाना है, माइंड करना है, नहीं करना है, कोई तो कुछ भी कहेंगे, अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन उसे सुनकर दिल तक उतारना या ना उतारना, ये तुम पे डिपेंड करता है। तो याद रखना, दुनिया में किसी की ताकत ही नहीं यार कि तुम्हें वो उदास कर सके। अगर ये ताकत किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम खुद। चलिए जी, पापा की ये प्यारी सी बात तो इस वक्त मैंने आप तक पहुंचा दी। एंड अगर आपको लगता है कि इस बात में दम है, तो बिल्कुल मुझे एक थैंक यू मैसेज बनता है। एंड मीनवाइल मैं एक काम करती हूँ, जोश ब्रार एंड परंपरा टंडन की आवाज़ में आपको फिल्म बागी 4 से मेरा सबसे फेवरेट ट्रैक सुनाती हूँ। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है? ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
1: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Well, Javed Ali, Kirti Sangathia ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is from the film Ranjana. Ye gaana na mujhe bahut pasand hai yaar. Ye pyara sa gaana to sunaya lekin ek kaam ki baat bhi aap tak pahuncha hi dete hain. Yaar ek baat batana ki jab bhi aap kahin ghoomne jaate hain to us jagah ki kaun si baat aapko sabse zyada yaad rehti hai?
1: Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Yeah, national si baat hai, kisi bhi jagah ko agar hum dekhne jaye to bhai wahan ke iconic landmarks, world class events, ye sab to yaad rehte hain. Lekin iske alawa agar kisi jagah mein hame khaas kar warmth ya hospitality mehsoos ho to wo jagah aur bhi zyada yaad reh jati. And shayad isiliye Qatar jo hai duniya mein kafi alag hai aur isi excellence ko celebrate karne ke liye ek baar phir se aa chuka hai Qatar Tourism Awards 2026. देखिए इस साल और भी ज्यादा कैटेगरीज ऐड की गई हैं ताकि टूरिज्म इकोसिस्टम के हर हीरो को रिकॉग्निशन मिल सके, चाहे वो होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स, अट्रैक्शंस, इवेंट्स, डिजिटल क्रिएटर्स या सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस. वेल, कतर टूरिज्म ने कैटेगरीज को एक्सपैंड किया है एंड अगर इसकी लिस्ट को आपको देखना है तो बिल्कुल आप qatartourism.com पर जाकर चेक कर सकते हैं. एंड अगर आपको लगता है कि आपके वीडियोज के चलते लोगों ने कतर को बेटर एक्सप्लोर किया है तो एक बात खास कर ध्यान रखिएगा, टूरिज्म इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर ये कैटेगरी भी इस साल इंट्रोड्यूस की गई. बढ़िया जी, आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड. 16th ऑफ सितंबर तक आपके पास वक्त है कि आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें qatartourism.com पे जाकर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाओ भाई, अच्छी अच्छी एंट्रीज जो है वो शामिल करके आओ. एंड अगर आपको लगता है कि आपकी एंट्रीज का टेस्ट कराना है कि वो वाकई इस काबिल है या नहीं कि उसे पुरस्कार मिल सके, तो मुझे बुलाओ, रेस्टोरेंट का खाना भी चखेंगे, मुफ्त में आपके यू नो सेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे एंड साथ ही आपके वीडियोज में अपनी झलक भी पेश कर ही देंगे. क्या कहती पब्लिक? स्टेडियो टू मिर्ची बंदी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: Milci. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello, Tejinder ji.
2: हाँ जी
3: तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
2: जी, हाँ जी किया था।
3: हाँ, ये तेजेंद्र जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
2: कितना लेट मिलेगा
3: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
2: हाँ जी,
3: एक सेकंड। हाँ, इमरजेंसी का है सर, 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
2: 3.5 महीने बाद?
3: हाँ जी
2: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
3: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, आपके आसपास कोई है तो नहीं?
2: नहीं, कोई नहीं
3: है। मैं ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
2: अच्छा।
3: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
2: क्या बोल रहा है भाई, कौन? हेलो।
3: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप बल्कि वो बंदा ही।
2: हेलो।
3: हाँ बोलिए बोलिए।
2: क्या बोल रहा भाई?
3: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
2: मैं बोल रहा हूँ,
3: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
2: क्या बोल रहा है, क्या?
3: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
2: नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
3: यार आप मेरी। तेजेंद्र जी
2: नहीं,
3: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा, 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा 1.5 महीने के लिए, आपका नाम यूज कर रहा है। आपका नाम यूज करने में आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो?
2: नाम बता पहले।
3: ये लकी ड्रॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया है भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूँ।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: तो सिर्फ छोरे करें,
5: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: नहीं जन्म अमिताभ भट्टाचार्य की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़, ये खूबसूरत सा गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन कोई बात है जो आपको अलर्ट कर रही है, जरा उस पर ध्यान दे दिया जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास और साथ ही स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ, लेकिन ये तड़का सिर्फ लाइफ में एहसासों तक रहे भाई साहब, ये जो स्पाइस का तड़का है ना, ये आपकी सेहत में ना लगे ये बात जो है मैं डेफिनेटली 101% रीअश्योर करना चाहूंगी। वेल, इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें, वेदर अपडेट की बात करें, तो सबसे खास बात आपको जो मैं बताना चाहूंगी वो ये कि जब भी घर से बाहर निकले, चाहे वो 5 मिनट के लिए भी क्यों ना हो, एक बार फिर से कोई तो है जैसे आपको अपना बेस्टेस्ट बॉडी बनाना है, एंड दैट इज मास्क। देखो, मास्क इन हैंड वॉश जो है ना, हमारे घर पे अब कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये दो चीजें जरूर पाई जाती हैं। आजकल लोग कई बार पड़ोसी के यहाँ चाय पत्ती लेने कम जाते हैं, मास्क लेने ज्यादा जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको भी डस्ट एलर्जी है, तो वीकेंड तक, आज से लेकर वीकेंड तक आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, बिकॉज धूल और हवा ये दोनों जो है इस वक्त कतर में आपको देखे जाएंगे। वेल, कतर इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस अ स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, जिन्हें पॉपुलरली कहा जाता है शमाल विंड्स, एंड ये विंड्स जो है पूरे डेजर्ट एरिया से ट्रेवल करते हुए जितने भी सैंड है, डस्ट है, जो जो रास्ते में मिलते हैं सबको समेटती है। अरे, इनका दिल जो है ना बड़ा ही बड़ा है, कहती है आओ सब साथ में आओ एंड इन्हीं के चलते आसमान जो है पूरा का पूरा हेजी होने लगता है एंड विजिबिलिटी जो है ये कम होने लगती है। तो अगर बाहर जा रहे हैं, सनग्लासेस हो, मास्क हो एंड थोड़ा सा ज्यादा कॉशन हो। बाकी अच्छी कंपनी देने के लिए तो मैं हुई यार, टिक के बने रहना, सुनते रहना कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट। अच्छा चलिए, अगर मेरे साथ कनेक्टेड है तो मुझे ये बात जरूर बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस 5000 1896 5000 1896 लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल सुनिधि चौहान एंड महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में मेरा सबसे फेवरेट ट्रैक है। इनफैक्ट ये फिल्म जो है ना मुझे बहुत पसंद आई थी, लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो बड़ी अच्छी लगी थी यार। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यादें। एक बार चलिए इस गाने के मैजिक को फिर से जीते, क्या कहते हैं पब्लिक, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: में की स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: तो इसलिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वक्त आपसे जरा सी गुफ्तगू यानी कि बातचीत जो है वो हो ही जाए। तो चलिए एक काम करते हैं, एक बार फिर से कोई तो सवाल है जो मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ एंड आप उस सवाल का सही जवाब मुझ तक पहुंचाएंगे एंड आप भी फिल्मों के उतने ही लवर हैं जितनी कि मैं हूँ। एंड हाई अगर इस एक्टर के हैं तो सच कह रही हूँ, आपको ये करेक्ट आंसर बताना जो है ना ये लाजमी है। लेकिन ये कौन है? ये वही है जिसने 90s की हर एक लड़की के दिल में ऐसी खलबली मचाई थी ना कि इसे शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है यार। ये हीरो जब आया था ना तो लाइफ में मुझे पहली दफा इश्क प्यार मोहब्बत वाला क्रश हुआ था एंड मेरा दिल जो है पूरी तरह से चकनाचूर यानी कि क्रश तब हुआ था जब मुझे पता चला कि यार ये तो कमिटेड है एंड फाइनली इसकी शादी होने वाली है। लेकिन ये कौन है, इसकी आवाज मैं आप तक पहुंचाती हूँ। आइडेंटिफाई करके आप दो चीजें बताएंगे कि ये किसकी आवाज है एंड ये जो डायलॉग है ये किस फिल्म से है। वैसे इस डायलॉग ने मुझे सही प्यार का मतलब भी सिखाया, कब कहाँ कैसे, चलिए आप तक पहुंचा ही देते हैं। सो हियर वी गो।
1: प्यार का मतलब सिर्फ प्यार का इजहार करना नहीं होता,

0: किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी मिटाना भी है।
1: क्या बात यार, बस इनकी यही बात सुनने के बाद मैंने अपना प्यार जो है ना इनके लिए मिटा दिया, बस कुर्बान कर दिया। ये शख्स है तो है कौन, और ये बात हुई तो हुई किस फिल्म में? फटाफट से करेक्ट आंसर भेजो यार, 5000 1896, 5000 1896। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, मीन वाइल आदित्य एक ही आवाज। ये अगला प्यारा सा गाना चांद सी वालियां, आप तक एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Well, Rekha Bharadwaj and Toshi Rana ki khoobsurat si awaaz, and what a lovely track it is. Kya khoobsurat sa gaana yaar, from the film Ye Jawani Hai Diwani. Lekin sach kahun yaar, Pritam ki composition jab jab in dino pahunchne lagi hai na, aisa lagta hai ki dil ko jhangjor ke rakhna kise kehte hain, ye baat aap aur hum bahut achhi tarah se samajhne lage hain. Mirchi Anshu. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. लेकिन हाँ, जो चीज़ मैंने आपसे पूछी थी, जिसका जवाब आपने इतना बखूबी दिया है, जरा उसकी दास्तां इस वक्त पूरी हो जाए. देखो यार, आपने और हमने मिलकर अबसे कुछ देर पहले खेला आज का बॉलीवुड वाला सरप्राइज टेस्ट, जहाँ पे कोई तो एक आइकॉनिक सी फिल्म है जिसने बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स को एक साथ लाने का काम बखूबी किया, उसकी कोई खास बात है जो मैंने आप तक पहुँचाई थी. इश्क प्यार मोहब्बत के किस्से आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर, बस मुझे ये बताना था कि ये फिल्म है तो है कौन सी, एंड साथ ही अगर ये आवाज है तो किस एक्टर की है. चलिए एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड, जल्दी से मैं आपको वो डायलॉग कॉन्वर्सेशन फिर से सुना दूं. अगर सुनते हुए अभी भी लगे कि भैया हमने तो सारा डिटेल पहचान ही लिया, तो करेक्ट आंसर भेज देना 5000 1896 पर. बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगी कि लोग बाग यानी कि जनता जनार्दन का क्या ही कहना है. सो हियर यू गो.
1: प्यार का मतलब सिर्फ प्यार का इजहार करना नहीं होता,

0: Well, Hariharan and Sukhvinder Singh ki pyari se awaaz, and what a lovely, lovely track it is from the film Taliyar. Matlab Akshay Khanna and saath mein Aishwarya Rai Khan, wo vaadiyan, wo feeling. Yaar, kuch baatein aisi hoti hai na jinhein aap shabdon mein bayan nahi kar sakte, and ye gaane ka depiction kuch isi tarah ka hai. And khaas kar, agar is gaane ke shabdon ko dekhne ki koshish karein, bhai ye gaana jo hai na, ye sirf sun ke enjoy karne ka gaana nahi hai. The song is supposed to be felt, mehsoos karne ki baat hai. Kya khoobsurat lyrics agar kisi ne likhe hain, to wo hai Anand Bakshi. And इस फिल्म में सुभाष घाई ने जुनूनली अपनी जान लगा दी यार. Honestly, one of the most iconic and beautiful films that we have ever come across in Bollywood. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते तो आ चुकी हूँ, लेकिन साथ में मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि आज आपके घर पे बन रहा है खाने पीने में तो क्या बन रहा है, मतलब कुछ स्पेशल खास रेसिपी प्लान की हुई है समझ के लिए, यूजली क्या बनाते हैं घर पे? यार देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो कभी कभी जब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे अगर कुछ खाने का दिल नहीं है, तो मेरा एक आइटम तो फिक्स मैंडेट है जो समर्स में हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर बनेगा, एंड दैट इज़ मही चावल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दही चावल, आई एम टॉकिंग अबाउट मही, यानी कि छास, बटर मिल्क एंड उसके साथ राइस, उसमें ज़रा सा वो जीरे का, यू नो, जीरे का पाउडर, साथ ही नमक एंड थोड़ा सा कोई अचार एंड प्याज दे देना. भाई, ये कॉम्बिनेशन ऐसा पक्का है मेरी लाइफ में कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उसके बाद. चलिए, मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं आपके घर की बात करूँ तो समर्स में यूजुअली आपके घर पे क्या बनाया जाता है? वैसे मौसम जो है अपना अलग कोहराम मचाने के लिए इस वक्त पूरी तरह से तैयार है. ज़रा देखें सूरज चाचू क्या ही पैगाम लेकर आए.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
0: Weather update. Absolutely. अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूँ, सो इट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 47, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 35. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें. बाकी आपकी जिंदगी में भाई और कलेजे में ठंडक लाने के लिए मैं तो हूं ना, टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट. मीनवाइल वेदर अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय
2: वेदर चेक, ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब. फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813.

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
1: अच्छा,
2: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
1: के पास है क्या ये सर्विस?
2: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
1: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
2: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
1: और ठीक है,
2: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
1: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
2: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
1: ये क्या है भैया?
2: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
1: तो मशीन मशीन चलाने आती भी है
2: सर, मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
1: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
2: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
1: मजाक कर रहे तू मेरे से?
2: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर,
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
2: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
7: दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

आशा का ये खूबसूरत सा मैजिक हंसिका परीख का साथ फिल्म का नाम सही आ रहा है और पावर पैक ट्रैक इट इज उफ अनीत पड्डा एंड आहान पांडे आई लव यू गाइज

welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड भाई, इस वक्त ना अगर मुझे आपको कुछ बताना है या आपके साथ कुछ करना है तो आपको ना बहुत बहुत बधाइयाँ देनी है. अरे बधाइयाँ जी, बधाइयाँ बधाइयाँ हो. अरे गजनी की शादी हो गई. गजनी यानी कि आमिर खान यार, क्या ना उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, उन्हें भूलने की बीमारी है. लेकिन ना वो अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट भूलते हैं, ना वो अपने बच्चों को भूलते हैं, ना खाना पीना भूलते हैं. वो ना बस अपनी बीवियों को हर 15 साल में एक बार भूल जाते हैं. एंड इसी सिलसिले को कायम करते हुए जब वो दूसरी बार अपनी बीवी को भूले तो याद आए भाई, नहीं तीसरी भी होनी चाहिए. जोक्स अपार्ट, आमिर खान जो हैं अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से सेटल हो चुके हैं यार. हर किसी की लाइफ के अपने अपने चॉइसेस होते हैं, अपनी प्रायरिटीज़ होती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड इंसान को ना कभी भी ज़िंदगी में अकेला नहीं रहने का, ये बात तो तय है. तो आमिर खान इज़ नाउ ऑफिशियली मैरिड विथ एंटरप्रेन्योर गौरी स्प्रैट. एक बार ज़ोरदार इस बात पर तालियाँ हो जाए. चलिए जी, लेकिन अगर इनकी फर्स्ट मैरिज की मैं बात करूँ, सो दैट हैपन इन द ईयर 1986 विथ रीना दत्ता एंड उनके दो बच्चे जुनैद एंड नीरा. लेकिन आफ्टर ही गॉट डिवोर्स्ड, उन्होंने शादी की अपनी असिस्टेंट से साल 2005 में, यानी कि किरण राव से. एंड उनका भी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा बेटा है, दैट इज़ आज़ाद. लेकिन फाइनली अब साल 2026 में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया बाय मैरिंग एंटरप्रेन्योर गौरी स्प्रैट, हु ऑल्सो हैपन्स टू बी हर His childhood friend. तो दोनों की अब शादी हो चुकी है. दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं यार. मैं तो इतना ही कह रही थी, आमिर ज्यादा कुछ नहीं, बस आप बुला लेते, हम जो लिफाफा खाली ना लाते जैसे कि आप लेकर गए थे. फिल्मों में देखा हमने आप खाली लिफाफे लेके जाते हैं, लेकिन हाँ यार, हम ना बदले में कुछ मिठाई शिठाई आपकी शादी में खा के आते तो थोड़ी खुशी हो जाती. क्या कहती पब्लिक. चलिए, आमिर को मुबारकबाद तो हमने दे दी, लेकिन इस वक्त आपकी जिंदगी में खूबसूरत सा आशिया मैं लेकर आ जाऊँ. निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज़ है अगला गाना. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची। इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: खूबसूरत सी आवाज उन्होंने लवली ट्रैक इट इज 1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म डर का ये गाना, जिसके बाद जिस जिस लड़की का जन्म हर किसी घर में हुआ उसका नाम किरण जो है वो जरूर रखा गया। वैसे कुछ और भी खास बात है,
1: मिर्ची अंशु।
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। आपकी जिंदगी में मिठास एंड स्पाइस के तड़के के साथ आपको ये ब्लॉकबस्टर गाना तो मैंने सुना दिया, जिसमें आपको अगर कोई नजर आए तो वह है शाहरुख खान, जूही चावला। वैसे इस फिल्म में अगर कोई और थे तो वो सनी देओल भी थे। एंड इस लेजेंडरी गाने के लेजेंडरी म्यूजिक को अगर किसी ने दिया तो वो है शिवन हरी। एंड इस गाने को लिखा था, एक बार फिर से क्या खूबसूरती से, वो है आनंद बख्शी। लेकिन एक बात आपको पता है कि जब ये गाना उदित नारायण साहब ने गाया था, उन्हें पता ही नहीं था कि ये शाहरुख खान के लिए, उन्हें इनिशियली ये लगा कि आमिर खान के लिए। लेकिन जब फाइनली शाहरुख खान ऑन बोर्ड आए तब मेकर्स को ये फील हुआ कि उदित की आवाज़ जो है ये शाहरुख के लिए एकदम फिट एंड परफेक्ट बैठती है। तो बस जो इनिशियल कोलैबोरेशंस की अगर हम बात करें, जहां से उदित नारायण की आवाज़ शाहरुख खान की आवाज़ की सिनोनिमस बनने लगी, तो उसमें इस गाने ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एंड उसके बाद आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे जब जब शाहरुख ऑन स्क्रीन में नजर आए तो उसके पीछे की आवाज़ को और सुहाना अगर किसी ने बनाया तो वो है उदित नारायण। वैसे चलिए इस वक्त आपके मूड को मैं सुहाना बनाने की कोशिश कर लूं। हाँ जी, जब जब ये पता चलता है कि एक्सचेंज का रेट काफी कमाल है तो आपकी और हमारी जिंदगी जो है वो सुहानी हो ही जाती है। एंड आई पे एक बार फिर से ये खुशियां लेकर हमारी लाइफ में आ ही गया है। वैसे अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलने वाले हैं नेपाली रुपीज 41.76। क्या बात है जी, इंडिया वालो इतना समझ जाओ जश्न मनाने का वक्त आ गया है भाई। वन रियल के अगेंस्ट कोई रेट है तो वो है 26.15। कैन यू बिलीव इट, लास्ट वीक ही भेजी थी यार पैसे, पते होते तो आज भेजती। पाकिस्तानी रुपीज 76.59। जो वेकेशन पे गए आते वक्त जो है मिठाई का डब्बा जरूर लेके आओगे, एक्सचेंज रेट अच्छा चल रहा है। लंकन एक बार फिर से मजा रहा है डंका विद 91.84। एंड जरा देखते हैं मिष्टी डोई यानी कि बांग्लादेशी एक्सचेंज रेट का क्या हाल है, वन रियल के अगेंस्ट 33.93। यार वो जो ना मुझे मिष्टी डोई बहुत पसंद है बांग्लादेश की, सच में वो जो दही से बनता है। सो एनी बांग्लादेशी इज कनेक्टेड विद मी एट द मोमेंट, जब भी घर में नेक्स्ट टाइम मिष्टी डोई बनाओगे मेरे लिए जरूर लाओगे, पक्की बात है जी। वैसे चलिए मुंह मीठा तो मैंने अच्छे एक्सचेंज रेट के साथ आपका करा दिया, बट इज ब्रॉट टू यू बाय

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जॉन अब्राहम आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री.
3: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई. क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन. ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार. एंड आई मीन holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who will survive and come out.
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार is the only person in the हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो by choice इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: only on मिर्ची, इट्स हॉट.
4: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार.
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
5: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: बल बंजारी की खूबसूरत सी आवाज में बड़े लवली ट्रैक इट इज, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना था उस वक्त आपको सुना दिया। लेकिन जाने से पहले एक खास बात आज और भी बताती जाऊं।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लेकर एक बार फिर से आ चुकी हूँ। Well, बचपन से ना एक बात मैंने सीखी है अपने घर में और जरूर सीखी है कि चाहे हम दिन भर कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन जो खाने का वक्त हो, एटलीस्ट दिन के एक से दो मील की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ पारिश करें कि उस वक्त आप अपने परिवार के साथ बैठ कर जरूर खाना खाएं। दिन भर तो हम न जाने कितनी सारी एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व रखते हैं, बहुत सारी बातों में व्यस्त रखते हैं, कई बार घर में होकर भी हम साथ ना होते, लेकिन एटलीस्ट ये जो खाने का वक्त होता है ना, उस वक्त हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर। इनफैक्ट हमारे घर एक सबसे बड़ा रूल ये है कि डिनर टेबल में या कहें जब भी हम मील साथ में ले रहे हैं उस वक्त किसी का सेलफोन उनके पॉकेट में भी नहीं होता, टेबल तो बहुत दूर की बात है। तो सारे हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर, ऑफिस की बात, बाहर की बात, सब कुछ छोड़कर जो खाना खाने का वक्त हो वो फैमिली टाइम हो, एब्सोल्यूट फैमिली टाइम हो, ये काम एक बार करके देखना है, उसके बाद देखना कि लाइफ में ना हर तरह का स्ट्रेस एंड टेंशन कैसे दूर होता है एंड बॉन्डिंग का सही मजा आता है तो कैसे आता है। एंड इसका इंप्लीमेंटेशन आज से करेंगे, चाहे लंच हो या डिनर। एंड यू आर गोना बी लेटिंग मी नो टुमारो इफ यू वर एबल टू फील द डिफरेंस इन द वे यू कंज्यूम योर मील्स और नॉट। 5000 1896 5000 1896 वी विल गेट कनेक्टेड द इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। चलिए अरिजीत सिंह की आवाज, ये अगला प्यारा सा गाना, द टाइटल ट्रैक ऑफ कलंक, प्लेइंग हियर राइट फॉर यू। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु। मसला महबीबी।

0: पता नहीं क्यों बैठे बैठे ना मुझे मेरी जिंदगी की बनाई गई पहली कॉफी बड़ी जोरों से याद आ रही है। वेल एक्चुअली वो कॉफी कॉफी नहीं थी, वो कॉफी तो एक्चुअली एक कॉमेडी शो बन गई थी।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And हुआ ये था बॉस कि मैं ये कॉफी बना रही थी अपनी एक कजिन के लिए जो कि अमेरिका से आई थी। अब घर में छोटे होने का ये नुकसान तो होता ही है ना कि सारा काम आप ही को दे दिया जाता है। तो जब उन्होंने डिमांड की कि मुझे कॉफी पीने का दिल है तो बोल दिया गया कि सारा तुम जाओ, तुम कॉफी बनाकर लेकर आ जाना। मैंने कहा यार मुझे तो कॉफी बनानी आती नहीं है, आई हैव नेवर मेड अ कॉफी। तो एवरीबडी टोल्ड मी कि देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो काम करने की आदत थी, मैं चली गई कॉफी बनाने के लिए। और मैंने कॉफी बिल्कुल मम्मा के स्वाद अनुसार बनाई। जो कॉफी मम्मा हमारे लिए बना के दिया करती थी ना, वही कॉफी वैसी की वैसी कट कॉपी पेस्ट मैंने अपनी कजन के लिए भी बना दी। रिमेम्बर शी इज एन अमेरिकन कजन जो ब्लैक कॉफी पीने की आदी हुआ करती थी। उनके लिए मैंने दूध कॉफी बनाई थी। और कैसी वाली, वो जो चुटकी भर कॉफी डाला करती थी ना मम्मा हमारे लिए जब भी कॉफी बनाती थी, बिकॉज ये कॉफी तो बेबीज कॉफी थी ना, वैसी ही कॉफी मैंने अपनी कजन के लिए भी बनाई थी। और उन्होंने जैसे ही पहला सिप लिया और जो पेट पकड़ पकड़ के वो हंसी है, आज तक मेरी वो कॉफी ना एज अ जोक याद की जाती है। और आज तक जब भी हम सारे कजन इकट्ठा होते हैं ना, तो इस कॉफी के जिक्र के बिना हमारा इकट्ठा होना पूरा ही नहीं होता है। बट दिस ऑल्सो मेक्स मी थिंक अबाउट द फैक्ट कि कितने मासूम थे यार हम। एक चुटकी भर कॉफी जो हमारे दूध के अंदर डाल दी जाती थी, हम उसे समझते थे कि यही रियल कॉफी है। अब जब रियल वर्ल्ड में ब्लैक कॉफी पीने लग गए ना, तो समझ में आ रहा है कि यार ब्लैक कॉफी इज द रियल कॉफी, नॉट दैट चुटकी भर कॉफी पाउडर वाली कॉफी। बट हाँ एक बात तो जरूर है, वो चुटकी भर कॉफी पाउडर वाली जो कॉफी हुआ करती थी ना, बड़ी स्वाद हुआ करती थी, क्योंकि उस चुटकी भर कॉफी पाउडर के साथ हमारी चुटकी भर उम्र हुआ करती थी और चुटकी भर जिम्मेदारियां भी हुआ करती थी। ज्यादा से ज्यादा बैग पैक कर लेना, होमवर्क कंप्लीट कर लेना और सुबह टाइम पर उठ जाना, घर आकर यूनिफॉर्म चेंज कर लेना, और क्या ही जिम्मेदारी हुआ करती थी यार हमारी। लेकिन आज जो हम ब्लैक कॉफी पीने लग गए हैं, अडल्टिंग के फेज में आ गए हैं, इस उम्र में आने के बाद समझ में आ रहा है कि यार वो चुटकी भर कॉफी पाउडर वाले जमाने ही ज्यादा अच्छे थे। ये बड़ों वाली कॉफी पीने का क्या ही शौक चढ़ा यार जिंदगी को भी। वो कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, पता ही ना होता बड़े होने के बाद क्या क्या जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो कितना अच्छा होता, छोटे ही रह जाते और वो चुटकी भर कॉफी पाउडर वाली कॉफी से ही काम चलाते, नहीं क्या। चलो जी, नाउ विद दिस मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida la burga. Energy, burga.
1: Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
1: अभी कोई और बोल रही थी।
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
1: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
1: कोई बोल रहा है?
2: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
9: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
11: अर्ज किया है
12: इरशाद, इरशाद।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष.
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स. जबरदस्त ट्रैक्स. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
2: 89.6 FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर मैं आपसे बोलूं कि गोलमाल सीरीज की पहली फिल्म का एक आइकॉनिक डायलॉग है जो हम आज तक अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं एंड इट हैज आल्सो टर्न इनटू अ मीम, तो कौन सा डायलॉग होगा वो?
0: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आज मिड्डे मोहब्बत पर बॉलीवुड के 90s एंड अर्ली 2000 के एरा के कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स जो हमारी जिंदगी में प्रिंट हो चुके हैं, छप चुके हैं, उनके बारे में डिस्कशन चल रहा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है। और ये जो डायलॉग जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र ही किया है और आपको गैस करने के लिए कहा था, वेल दैट डायलॉग इज जल्दी बोल पनवेल निकलना है। वेल, ये जो डायलॉग था जो ओरिजिनली फिल्म में वसूली भाई यानी कि मुकेश तिवारी ने कहा था, आपको पता है इस डायलॉग के पीछे भी एक बड़ी फनी कहानी है। हुआ ये था कि जब सेट पर शूट चल रहा था तो मुकेश तिवारी ने जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनसे पूछा कि उनका सीन कब लगने वाला है क्योंकि काफी डिले चल रहा था। तो वो बंदा जो है वो बार बार आके बताता कि सर अब, सर तब। फाइनली मुकेश तिवारी ने एक बात बोली कि यार जल्दी बता पनवेल निकलना है। एंड ही एक्चुअली मेंट इट बिकॉज उनको एक्चुअली पनवेल जाना था शूट कंप्लीट करके, तो वो चाह रहे थे कि भाई अपडेट मिले तो फिर मैं डिसाइड करूं कि पनवेल कितने बजे निकलना है। बस फिर क्या था, रोहित शेट्टी ओवरहर्ड द कॉन्वर्सेशन और उन्होंने मुकेश तिवारी को कहा कि बस सही है, बहुत सही है, ये डायलॉग अपन मूवी में रखते हैं। जाने रोहित शेट्टी को इस डायलॉग में क्या दिखा कि उन्हें समझ आ गया कि हम इंडियन ऑडियंस जो है वो पागल हो जाएगी इस डायलॉग को लेकर। एंड दिस डायलॉग वर्क्ड वंडर्स। इनफैक्ट वसूली भाई का जो कैरेक्टर है वो इस डायलॉग को लेकर और ज्यादा हिट हो गया कि जल्दी बोल पनवेल निकलना है। और अगर हमें भी कहीं लेट हो रहा होता है ना तो हम भी यही डायलॉग मार रहे होते हैं कि जल्दी बोल पनवेल निकलना है। आप बताओ, क्या आप भी इस डायलॉग का कई हद तक इस्तेमाल करते हो अपनी जिंदगी में? डीएम करके बता सकते हो मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
7: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
8: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
9: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
10: आएंगे दीदी।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मिलेनियल्स की बात की जाए ना बॉस, तो हम हैं, बाकी पानी कम है, क्योंकि हम जो पिक्चरें देख देख कर बड़े हुए ना, उनके तो डायलॉग्स में भी दम है।
0: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिड्डे मोहब्बत पर मैंने सोचा कि क्यों ना 90s और अर्ली 2000 की उन मूवीज के फेमस डायलॉग्स के बारे में बात की जाए जिन्होंने आग लगा दी थी तब भी और आज भी हमारी जिंदगी में। वो ऐसे काम आते हैं कि अगर किसी के साथ वाइब चेक करनी होती है ना, तो बस एक डायलॉग काफी है बॉस, समझ में आ जाता है कि अगला जो है वो वाइब चेक पास कर चुका कि नहीं। जैसे अभी देखो, आपके और मेरे साथ वाइब चेक कर लेती हूँ, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। ये डायलॉग ऐसा डायलॉग है जो कि एक बार इस्तेमाल हुआ कुछ कुछ होता है मूवी के अंदर, लेकिन बार बार इस्तेमाल हुआ हमारी जिंदगी की मूवी के अंदर, सो मच सो दैट कि हर जगह हम इसका इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। और अगर कहीं किसी को कुछ बात समझानी होती है ना, तो बस ये डायलॉग बोल देते हैं। अगला अगर मिलेनियल है और वाइब चेक हो चुकी है, वो बिना आगे की एक्सप्लेनेशन

बेटा हमारी बात समझ जाएगा बॉस। लेकिन आपको पता है करण जौहर ने ये डायलॉग अपनी पहली स्क्रीन प्ले में लिखा जब वो डायरेक्शन में डेब्यू कर रहे थे, और उन्हें इस बात का डर था कि कुछ कुछ सुनकर लोग हंस पड़ेंगे। लेकिन SRK का जज्बा, SRK की डायलॉग डिलीवरी, उन्होंने इस डायलॉग को ही आइकॉनिक बना दिया भाई। इस डायलॉग को शाहरुख खान ने बहुत ही कैजुअली लेकिन बड़ी ही गहराई के साथ बोला है। वो डिलीवरी इतनी नेचुरल लगी ना लोगों को कि लगा कि जैसे कि कोई रियल लाइफ लड़के ने अपनी फीलिंग्स एडमिट की हो किसी बंदी के सामने। बस फिर क्या था, तब से लेकर आज तक वी हैव फॉलन इन लव विद दिस डायलॉग, और हम 90s किड्स इस डायलॉग को क्रश को इम्प्रेस करने के लिए या फिर रिजेक्ट होने के बाद स्टेटस अपडेट देने का अनऑफिशियल तरीका बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एज इफ सामने वाला इंसान या तो टीना है या फिर अंजलि है। अब मैं नहीं बोल सकती कि आप समझोगे नहीं, क्योंकि आप मेरी बात समझ चुके हो। कमिंग अप मोर सच डायलॉग्स ऑन मिडडे मोहब्बत टुडे, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
2: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोलडाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
3: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
4: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कैसे रुक सकता है?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: हमारी काम वाली बाई बहुत ही रेगुलर है, हर दूसरे दिन नहीं आती, क्या करूं?
1: वेल इट्स सो सिंपल यार, हर दूसरे दिन नहीं आती ना, तो उसको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम पे रखा कर। या इट्स जस्ट अमेजिंग, फैंटास्टिक, सिंपल।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है सनोरीटा।
0: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। वेल, अगर कोई बहुत बड़ा गम जिंदगी में चल रहा है ना, तो उस बड़े से गम को छोटा करने का ये बहुत ही सुपर्ब आइडिया है। ये डायलॉग बोलो और वो गम अपने आप छोटा लगने लग जाता है, क्योंकि इस डायलॉग में कुछ ऐसी बात है कि है तो इसके अंदर काफी भारी दम, लेकिन जैसे ही इसको बोलते है ना, तो हमें लगता है हमारा गम कम। कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है सनोरीटा। और आपको पता है कि ये जो आइकॉनिक डायलॉग है फ्रॉम द फिल्म DDLJ, इसके लिए कहा जाता है कि ये शाहरुख खान की स्क्रिप्ट में नहीं था, बल्कि उन्होंने इस डायलॉग को इम्प्रोवाइज किया था। शूटिंग के दौरान SRK और डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा मस्ती कर रहे थे और ये डायलॉग एक स्पॉन्टेनियस लाइन के तौर पर आया। आदित्य को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने इसको फिल्म में ही रख लिया। बाद में ये लाइन इतनी हिट हुई कि शाहरुख खान का ट्रेडमार्क ही बन गई। आज भी जब शाहरुख खान किसी इंटरव्यू में ये लाइन कैजुअली बोलते हैं ना, तो लोग तालियां बजाना नहीं भूलते। और हां सनोरीटा, आज अगर तुमने नाश्ते में समोसे के साथ मीठी चटनी की जगह हरी चटनी खा ली ना, तो चिंता मत करना, क्योंकि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं सनोरीटा। कमिंग अप मोर सच आइकॉनिक डायलॉग्स फ्रॉम द 90s एंड अर्ली 2000s बॉलीवुड एरा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vilva, la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hi, ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तू एक बात सुन, ये आपके हो
3: पास
1: क्या है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा? 33501। हाँ सर, 33501।
1: हेलो,
3: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना होता है।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
8: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM।

0: Udit Narayan ki awaaz mein this gana from the film Koyla is some magic. Also, contribution Rajesh Roshan ka bhi hai because of the reason ki music is film ka jo raha hai na, wo bahut hi breathtaking hai yaar. Jo notes dil ko chhu jaate hai na, aur ye Koyla ke sare gaano ke saath hai. Ki sare ke sare gaano mein kuch aisi baat hai, kuch aise jazbaat hai ki jab sunte hai na, to kaano mein bas dhun padne ki der hai boss, dil mein kuch kuch hone lag jata hai. Same as with this song. Aur is gaane ki mohabbat par char chaand laga diye is gaane mein Shah Rukh Khan ki presence. Of course, कहाँ ही जाना था यार ये गाना. जब countdown shows में ये गाना आया करता था ना, तो ये वो गाना हुआ करता था जिसको देखे बिना अगर मुझे बाथरूम भी जाना होता था ना, तो भी मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि नंबर 5 पे ये गाना आने वाला है. भाई ये गाना देखने के बाद ही अपन जाएंगे जो जो काम करने के लिए जाना है.
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना.
2: Midday मोहब्बत with सारा. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. And now, निकालते हैं हमारे पिटारे में से एक और चीज, and that is मान ना मान करो गानों की पहचान. और यहाँ पर 90s या early 2000 के दो गानों को मिक्स करके मैं आपके लिए चला देती हूँ, और आपको गेस करना होता है कि ये दो गाने आखिर है कौन से. तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं.

बस जी डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता दो कि ये जो दो गाने कौन सी मूवी के हैं। और अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: दोस्ती कैसे सुले मैडम? नो सॉरी, नो थैंक यू।
8: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
9: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
10: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमारा दिल जब बात बात पे खुश हो जाता है ना, तो दिल को एक ही डायलॉग याद आता है, मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो खुश हुआ।
0: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये हमारे जीवन का सत्य है बॉस, कि आज जब हमारी सैलरी आ जाती है या फोन गिरते गिरते बच जाता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि मम्मा ने आलू के पराठे बना दियो, तो हम सब एक ही डायलॉग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन वेरियस सिचुएशंस जो छोटी छोटी खुशियां दे रही होती है हमें, कि मोगैम्बो खुश हुआ। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मोगैम्बो कितना खुश मिजाज आदमी था यार, बात बात पे खुश हो जाया करता था। हमें मोगैम्बो से काफी कुछ सीखना चाहिए बॉस, छोटी छोटी खुशियों को कैसे बड़ा करके सेलिब्रेट करना चाहिए। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू लर्न फ्रॉम मोगैम्बो। एंड वेल, ये जो डायलॉग था मिस्टर इंडिया में, ये लिखा था जावेद साहब ने, लेकिन किसे पता था कि ये इतनी आइकॉनिक लाइन बन जाएगी, ये डायलॉग खुद एक कैच फ्रेज बन जाएगा जिसे बच्चे, बूढ़े, मिमिक्री आर्टिस्ट और यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस तक इस्तेमाल करने लगेंगे। इनफैक्ट जब अमरीश पुरी साहब को ये रोल ऑफर किया गया था ना, तो वो थोड़े से स्केप्टिकल लगे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना और डायलॉग पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही मजेदार है। इस डायलॉग के बाद अमरीश पुरी की जो पहचान एज अ विलन थी ना, उसने एक नई ऊंचाई छू ली थी और मोगैम्बो वाकई में खुश हो गया था। एंड विद दिस मोगैम्बो खुश हुआ, इस डायलॉग उस एरा का सबसे ज्यादा इमिटेट किया जाने वाला विलन डायलॉग बन गया था, और उतना ही फेमस मोगैम्बो भी हो गया था इसी के साथ साथ। आपको क्या लगता है कि इंसान को नॉर्मल बोरिंग रहना चाहिए या फिर बात बात पर मोगैम्बो बन जाना चाहिए और खुश होते जाना चाहिए? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
2: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिन सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Our business is our business. None of your business.
5: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
6: Entertainment, entertainment.
7: Qatar का number one radio station.
8: 89.6 FM, Mirchi 1.
9: Mirchi 1.
10: It's hot.

0: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का ढास।
3: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं 3।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर राकेश रोशन ने इस डायलॉग के ऊपर कॉपीराइट्स ले लिए होते ना, तो न जाने कितनी रॉयल्टी का पैसा मिल गया होता उनको।
0: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And the dialogue that I'm talking about is from the film Karan Arjun. And of course, this goes without saying that this dialogue is मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये डायलॉग ओहो, इस डायलॉग में जितना दर्द है ना, उतना ही हमने इस डायलॉग का मजाक उड़ाया भाई जिंदगी के अंदर। रूम में कोई एंटर होता नहीं है कि फौरन से बोल देता है कि मेरे करण अर्जुन आ गए क्या, या फिर कोई अगर एंटर हो जाता है तो उसे ही करण अर्जुन बना दिया जाता है कि अरे करण अर्जुन आ गए। ये करण और अर्जुन की एंट्री और ये करण और अर्जुन का इंतजार हमारी जिंदगी में कहां कहां नहीं हुआ है यार। और इस डायलॉग को हमने कहां इस्तेमाल नहीं किया है, सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में हो, दिस डायलॉग हैज ऑलवेज बीन आवर सहपाठी। एंड क्लियरली दिस डायलॉग इज 90s के एरा का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग्स। सैलरी लेट आती हो तो भी हम यही कहते हैं कि करण अर्जुन आएंगे। पार्सल लेट आता हो तो भी हम यही कह रहे होते हैं कि करण अर्जुन आएंगे। और कहा तो ये भी जाता है कि इस डायलॉग को परफॉर्म करते करते राखी जी इतनी इंटेंस हो गई थी कि उनके खुद की आंखों में आंसू आ गए थे ये सोचते और कहते हुए कि उनके करण अर्जुन आएंगे। हालांकि वाकई में आई वुड से अगेन कि ये बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग सा डायलॉग है। सिचुएशन ही ऐसी होती है इस फिल्म के अंदर जहां जहां और जब जब ये डायलॉग इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम भी तो कौन से सीधे लोग हैं भाई, हमारा तो फर्ज बनता है कि सीरियसनेस में कुछ ना कुछ मजाक ढूंढ लिया जाए, और वही हमने इस डायलॉग के साथ भी किया है। आपके हिसाब से 90s या अर्ली 2000 के बॉलीवुड के एरा में ऐसा कौन सा डायलॉग है जो आप मानते हो कि इज आइकॉनिक? DM करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, Tejinder ji.
2: हाँ जी,
3: हाँ जी तेजिंदर जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
2: जी, हाँ जी किया था।
3: हाँ, ये तेजिंदर जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
2: कितना लेट मिलेगा
3: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजिंदर का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
2: हाँ जी,
3: एक सेकंड। हाँ, इमरजेंसी का है सर। 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
2: 3.5 महीने बाद?
3: हाँ जी
2: भाई साहब। तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
3: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजिंदर जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपके आसपास कोई है तो नहीं?
2: नहीं, कोई नहीं है।
3: ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
2: अच्छा।
3: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
2: क्या बोल रहा है भाई? कौन? हेलो।
3: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप बल्कि वो बंदा ही।
2: हेलो।
3: हाँ बोलिए बोलिए।
2: क्या बोल रहा भाई?
3: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
2: मैं बोल रहा हूँ,
3: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
2: क्या बोल रहा है? क्या
3: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
2: नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
3: यार। आप मेरी तेजिंदर जी,
2: नहीं
3: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा। 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा 1.5 महीने के लिए। आपका नाम यूज कर रहा है, आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है? क्या गाड़ी यूज कर रहा है वो?
2: नाम बता पहले। कौन रहा है?
3: ये लकी ड्रॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजिंदर को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजिंदर। तेजिंदर, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
4: हिट गाने कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमें पता हो या ना पता हो, ये बात तो रमेश बाबू को भी नहीं पता है, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू।
0: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर 90s और अर्ली 2000 के बॉलीवुड के एरा के आइकॉनिक डायलॉग्स पर डिस्कशन हो रहा है। एंड दिस डायलॉग क्लियरली फिट्स इनटू द लिस्ट यार, बिकॉज इस डायलॉग के जिक्र के बिना तो बॉलीवुड का जिक्र भी अधूरा सा लगता है। फनी थिंग इज कि ओम शांति ओम पिक्चर के अंदर भी एक पिक्चर शूट हो रही थी जिसमें की जो मेन लीड होती है वो ये डायलॉग बोल रही होती है, प्लेड बाय दीपिका पादुकोण ऑफ कोर्स। और अगर हमें लगा है कि यार ये डायलॉग में कुछ ज्यादा ही ड्रामा नहीं था, तो वो ड्रामा वाज मेंट टू बी लाइक दैट, बिकॉज फराह खान वांटेड कि वो 80s और 70s के एरा का जो ड्रामा होता है, मेलो ड्रामा जो होता है, वो चाहती थी कि इस डायलॉग के अंदर वो आकर पड़े। और वो हुआ भी, इतनी इंटेंसिटी के साथ दीपिका पादुकोण ने इस डायलॉग को बोला है। हालांकि जब वो एक्ट कर रही थी ना, तो मुझे कहीं पर भी हंसी नहीं आ रही थी। लाइक पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट दिस परफॉर्मेंस, इस डायलॉग को लेकर इन पर्टिकुलर ऑफ दीपिका पादुकोण, सो आई फेल्ट कि यार काफी अच्छा इनएक्ट किया यार बंदी ने इस डायलॉग को। लेकिन हम है बाकी पानी कम है, इस डायलॉग को उठा के लेफ्ट राइट सेंटर जो मीम बना के पेश किया गया है। इनफैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ्स के अंदर भी ये डायलॉग कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। जहाँ किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती है, तो हम यही डायलॉग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये डायलॉग तो यार HR के साथ भी अप्लाई होता है, जब वो हमारे इंक्रीमेंट की बात कर रहे होते हैं, तब उन्हें आटे दाल का भाव नहीं, सिंदूर की कीमत का भाव बताना पड़ता है। विच स्पीक्स अ लॉट, हाँ, क्योंकि जब एक इंसान की शादी हो जाती है तो खर्चे बढ़ जाते हैं। एंड वाकई में दिस इज समथिंग जो HR को पता होना चाहिए यार, कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो HR बाबू। एंड दिस क्लियरली स्पीक्स ऑफ द रियलिटी इन लाइफ कि यार देखो, सिंदूर जो है ना, उसका दाम पता करके ही शादी जैसी चीज में पड़ना चाहिए इंसान को। मुझे बहुत महंगा लगा, इसलिए मैंने अभी तक इस जोन में कदम नहीं रखा। आपका क्या हाल है, DM करके मुझे बता सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। और अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: SP Bala Subramaniam और लता जी की आवाज में आए हाय, ये गाना दिल के तार बजा देता है। कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: हम आपके हैं कौन से, ये मौसम का जादू है मितवा। ये वो गाना है कि जहाँ कहीं कोई मौसम बन जाए तो यही गाना हमारी जुबान पर आए भाई। और इस गाने का पिक्चराइजेशन ओ माय माय, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। और मुझे ना 90s के गानों में ना ये बात बड़ी अच्छी लगा करती थी कि न जाने कहां से इतने सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाया करते थे, और फिल्म में बताया जाता था कि वो अपने सारे काम छोड़ छाड़ के हीरो हीरोइन के आगे पीछे बस डांस कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं जिंदगी के। और आपको एक खास बात बताऊं, इस गाने में माधुरी दीक्षित ने जो रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है ना, ये ड्रेस इतनी वायरल हुई थी ना, मतलब मेरे घर में मेरी दो कजिन्स ने ऑलरेडी ये ड्रेस बना ली थी। उसके बाद मैंने भी ये ड्रेस पहनी, एक्चुअली उन्हीं की ड्रेस मुझे पास हुई थी, लेकिन ये ड्रेस जब उन लोगों ने बनवाई थी ना, तो भाई माधुरी दीक्षित का पोस्ट कार्ड बाकायदा लेकर गए थे वो मास्टर साहब के पास, और बताया था उन्होंने कि मास्टर साहब ये वाली ड्रेस बना देना। याद है आपको नेट वाली वो रेड कलर की ड्रेस? वैसे माधुरी दीक्षित तो जो कुछ भी पहना करती थी बहुत अच्छी लगा करती थी यार, क्योंकि लेटर ऑन जब मैंने उस ड्रेस को पहनना शुरू किया ना, तो मुझे ऐसा लगता था कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मगर एक बात बोलूं, ये गाना इज नेवर कुछ ज्यादा। ये गाना ना जितनी बार सुनो उतनी बार इस गाने से पहली मोहब्बत वाला प्यार हो जाता है। तो बस फिर यही गाना आपके लिए लगाती हुई मैं आपसे कहती हूँ, हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा आप मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिए एंड स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
2: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
1: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्पररी हीरोज को?
2: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
1: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
2: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
1: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
4: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
3: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
5: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
6: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
7: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: वो तभी आपका बंधु या तभी आपका सखा है जब आप गाड़ी में बोले उससे कि एसी चला के दिखा और एक मिनट में ठंडा करके दिखा दे। अरे कोई आपका कितना भी बंधु हो, सखा हो, सगा हो, भैया कोई गाड़ी के एसी को एक मिनट में ठंडा नहीं कर सकता। शाम के 4:02 से ज्यादा।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: आ गया मस्त मौला गौरव बातों की दुकान लेकर, जहाँ पर कतर में एकदम भयंकर रूप से गर्मी ने अपना माहौल बनाया हुआ है, वहीं कतर एयरवेज ने आपके लिए फास्ट पास बना दिया है। क्या है ये भी बताएंगे। समर कैंप्स हमारे कतर के अलग अलग कोने में कैसे चल रहे हैं, पाकिस्तानी मैंगो की क्या तैयारी है और किस तरह से स्वीट एंड ड्रिंक्स पर आने वाले टाइम एक्साइज टैक्स बढ़ने वाला है, अशगाल कहां सड़कों को तैयार कर कर पूरी कर चुका है, या फिर यूं कहें तो हमारे कतर में होने वाले और भी ढेर सारे इवेंट्स क्या खास कह रहे हैं, वो नन्हे बच्चे कौन है जो कतर के इस वक्त कह सकते हैं सबसे यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर है सस्टेनेबिलिटी के, और ये सब कुछ आपको यहीं पता लगेगा। बस आप कान लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो और मिर्ची के साथ अब अगले 4 घंटे का सफर एकदम फाइट कर लो भैया। हाँ जी, क्योंकि मेरे साथ अब एक से एक गाने और बातें और वो खबरें जो आपके काम में आती। मिर्ची इट्स हॉट अभी भी।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La virtua la murga.
1: Mirchi, murga.
2: हेलो
1: सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं सेल्यूलर से बोल रहा हूँ सर। हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
2: अच्छा,
1: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
2: के पास है क्या ये सर्विस?
1: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर। जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
2: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
1: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
2: ठीक है,
1: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
2: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
1: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया। अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
2: ये क्या है भैया?
1: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
2: तो मशीन चलाने आती भी है
1: सर? मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे? देखिए
2: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
1: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
2: मजाक कर रहे तू मेरे से?
1: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं
3: रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गालियां मत दीजिए यार।
1: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट पटाक।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कम है के?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1. It's hot.

कैसे हैं आप? कैसे हैं जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है? मैं तो बहुत जिम्मेदार हूँ। विश्वास नहीं करेगा, अगर तीन लोग खड़े हैं और कोई बोलता है ये जिम्मेदारी कौन लेगा, मैं तुरंत कहता हूँ कि ये ले लेगा। तहीने वाले या बाएं वाले को दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार जिम्मेदारी कोई तो उठाएगा। अगर मैं चूज कर दूंगा तो मुझे लगता है बेस्ट ही लोगों को मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं जिम्मेदारी लेने के मामले में बहुत ही जिम्मेदार हूँ, और कतर की खूबसूरती की जिम्मेदारी लेता है। सड़कों की खूबसूरती से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की खूबसूरती की बात करें तो अशगाल, और अशगाल ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है और ये लगभग 688 मिलियन कतरी रियाल का है। #974974 हम आपको बता दें कि पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगाल ने अनाउंस कर दिया है कि अब शुरुआत होती है कंस्ट्रक्शन वर्क की, जो कि पैकेज वन है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि इसगावा और अल्तुमेद एरिया में हो रहा है। यस, इसका पूरा का पूरा कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 688 मिलियन कतरी रियाल है, एंड ये आने वाले टाइम की फ्यूचर नीड्स को देखते हुए, प्रेजेंट नीड्स को देखते हुए बनाया जा रहा है। विजन 2030 को अलाइन करते हुए सब कुछ हो रहा है, तो आने वाले टाइम में इसगावा अल्तुमेद एरिया में आपको बहुत सारा कुछ नया दिखने वाला है। हालांकि कंस्ट्रक्शन वर्क जब शुरू होता है तो बहुत दिनों तक हमें दिखाई देती है अशगाल के वो बैरिकेटेड ढेर सारे डिवाइडर्स पे लगी जालियां, लेकिन आने वाले एरिया टाइम में इन एरिया में जबरदस्त कंस्ट्रक्शन होगा। वेल बता दें इसमें 27 किलोमीटर रोड है, 50 किलोमीटर पेडेस्ट्रियन एंड साइकिलिंग पाथ है। इसके अलावा रोड सेफ्टी फीचर्स, ट्रैफिक साइन, रोड मार्किंग्स, ये सब भी होगी, और लगभग 3900 कार की पार्किंग भी इस दौरान तैयार की जाएंगी। रेन वाटर ड्रेनेज नेटवर्क बनाया जाएगा 40 किलोमीटर का, 18 किलोमीटर का ट्रीटेड सीवेज एफ्लुएंट, यस ये भी नेटवर्क बनाया जाएगा, एंड सीवेज नेटवर्क लगभग 23 किलोमीटर का। बताइए इतनी बड़ी जिम्मेदारी कतर का अशगाल कितनी आसानी से लेता है, जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे ही होनहार डिपार्टमेंट चाहिए होता है जब किसी मुल्क को वाकई में तरक्की चाहिए होती है, और उसके ब्यूटिफिकेशन का काम जब भी होता है, और इसलिए अशगाल सबसे पहले खड़ा होता है और अशगाल कहता है कतर डिजर्व्स द बेस्ट, और वो ऐसा दे भी रहा है। 89.6 मिर्ची वन पर बहुत सारी बधाइयां इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होने पर। इस गावा वालों, अल्तुमेद वालों, आने वाले टाइम में तो भैया एकदम एरिया हाई फाई लगेगा। मिर्ची था।

0: हाँ जी, दूर नहीं हूँ मैं, आपके एकदम करीब हूँ, बस वॉल्यूम बढ़ा लो। लेकिन फिलहाल के लिए घर जाने वालों, आप जरा और तेजी से घर के लिए अपनी फ्लाइट के लिए बढ़ जाओ।
1: #974974
0: बायोमेट्रिक का सबसे फास्ट पास अब लॉन्च कर दिया गया कतर एयरवेज हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यस, कतर एयरवेज इन कोलैबोरेशन विद हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है फास्ट पास। ये एक फेशियल रिकॉग्निशन है जिसकी वजह से आप आराम से बिना किसी दिक्कत के एयरपोर्ट के टच पॉइंट पर जाकर आराम से खड़े होकर फटाक से आप अपने डेस्टिनेशन को निकल सकते हैं। यस, ये फेशियल रिकॉग्निशन बेसिकली एक फिजिकल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। आप यहाँ जाइए, अपना बोर्डिंग पास दिखाइए एंड कई सारी चीज़ें बड़ी इजी हो जाती हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी डाटा प्रोटेक्शन जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन किया गया है। कुल मिलाकर एक बार फिर से एकदम फास्ट सर्विस को तैयार है कतर एयरवेज विद हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये फास्ट पास सर्विस आने वाले टाइम में आपके सफर को और आसान बनाएगी, लेकिन उनके लिए जिनके पास पासपोर्ट है, अपनी जर्नी जो दोहा से स्टार्ट कर रहे हैं, 18 एज या उससे अबव है, उन्हीं के लिए है। बच्चों के लिए तो अभी भी आपको उनके साथ लाइन में लगना है और देख खड़ा रहे कायदे से है नहीं तो ये बोलते रहना। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चांटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चांटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चांटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची इट्स हॉट।
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते।

0: जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
1: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: श्रुति हसन ने गाया जोगनिया गाना और सुनाया किसने? लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब जो गर्मी है अपने तीसरे फेज में पहुंच चुकी है, 3rd of July से ही। इनफैक्ट ये अल हका स्टार जो है वो राइज कर चुका है। यस, अल हका मतलब एक सर्कल या रिंग, जैसे कि आप घोड़े के गले में एक नाल देखते हैं ऐसे बंधी होती है, बस वैसे ही कुछ होता है। और वही अल हका जो है वो अब हमारे कतर में छाया हुआ है। और इस दौरान होता क्या, अरेबियन पेनिनसुला एटमोसफियर पर इंडियन मानसून का असर होता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म इंटेंस हीट जो है वो बढ़ती जाती है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, कोशिश यही कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके आप पानी पीते रहिएगा ताकि आप गर्मी से बचे रहें। मिर्ची इट्स हॉट।
1: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री।
3: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन। ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट। ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट।
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम। अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो नींद आ जाती है।
2: क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
0: क्या करूँ?
1: अरे घोचू, तो लेटे लेटे पढ़ना, अच्छे से सो भी पाएगा रे तू।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: वेलकम है जी मेरे साथ मेरे शो के दूसरे घंटे पर आपका वेलकम है। हाँ जी फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम बता दें 5:03 से ज्यादा होने को आ गए।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और इस बीच जब मैं आपके साथ हूँ तो भाई बारी आती है 5 के घंटे में खेलने की, वो जिसे कहते हैं एक आवाज सुनाता हूँ और पूछता हूँ बताइए ये किसकी आवाज है। और आज इसकी बहुत ही खास बात है,
2: वो उस वक्त झूम बराबर झूम उनकी निकली थी और वो एड्स डायरेक्ट कर रहे थे। मैंने पूछा मुझे जॉब दे देगा तू, और उन्होंने मुझे एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब दिया। मैंने सोचा असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी अच्छी होगी, मैं सेट पर रोज जाऊंगा एक्टरों से मिलूंगा।
0: असिस्टेंट डायरेक्टर की एक जॉब मिल गई थी। कौन है ये एक्टर जिसको आप सुन रहे हैं?
2: वो उस वक्त झूम बराबर झूम उनकी निकली थी और वो एड्स डायरेक्ट कर रहे थे। मैंने पूछा मुझे जॉब दे देगा तू, और उन्होंने मुझे एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब दिया। मैंने सोचा असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी अच्छी होगी, मैं सेट पर रोज जाऊंगा एक्टरों से मिलूंगा।
0: हाँ जी तो क्या लगता है आपको 5001896 पर वॉइस नोट में जल्दी से अपना जवाब भेजिए और बताइए कि गौरव ये जो आप बता रहे हैं मुझे लगता है ये फला एक्टर की आवाज है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज मुझे किसी ने कहा है कि गुड इवनिंग आरजे मस्मौला आपकी आवाज फरहान अख्तर से मिलती है। किसी ने कहा कभी नहीं, जब मेरा गला खराब हो जाता है तो जरूर लोग बोलते हैं, पर नॉर्मली भी अब होने लगा है तो बात अलग है। यानी कि समय के साथ आवाज बदल गई है, कभी किसी जमाने में बड़ी मधुर होती थी, अब हमारी फरहान अख्तर जैसी हो गई है। फिलहाल के लिए 5001896 पर इंतजार कर रहा हूं आपके इस जवाब का कि ये कौन एक्टर है।
2: वो उस वक्त झूम बराबर झूम उनकी निकली थी और वो एड्स डायरेक्ट कर रहे थे। मैंने पूछा मुझे जॉब दे देगा, और उन्होंने मुझे एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब दिया। मैंने सोचा असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी अच्छी होगी, मैं सेट पर रोज जाऊंगा एक्टरों से मिलूंगा।
0: 5001896 पर सोचिए असिस्टेंट डायरेक्टर से आज ये खुद एक्टर हैं। कौन से हैं ये एक्टर? 5001896 पर मस्त बोलोगे और मैं इंतजार कर रहा हूं। सबसे पहला जवाब एक इंसान का आ गया है, इससे पहली बार में ही उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन मैं चाहता हूं वॉइस नोट में आप सभी अपना जवाब भेजें कि हाय गौरव मैं ये बोल रहा हूं और इसका जवाब है ये एक्टर। जल्दी जल्दी भेजो, तब तक हम बैंगल बोले तो चूड़ी बेचने वाले संजू राठौड़ को बुलाते हैं। इट्स हॉट।

0: हाँ जी, लेकिन हम आपके साथ आ जाते हैं और इस घंटे खेलते हैं। एक आवाज सुनाई जाती है और पूछा जाता है ये किसकी आवाज है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए अगली बार जब आपके साथ आऊंगा।
1: वो उस वक्त झूम बराबर झूम उनकी निकली थी और वो एड्स डायरेक्ट कर रहे थे। मैंने पूछा मुझे जॉब दे देगा तू, और उन्होंने मुझे एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब दिया। मैंने सोचा असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी अच्छी होगी, मैं सेट पर रोज जाऊंगा, एक्टरों से मिलूंगा।
0: कौन से एक्टर की आवाज है ये? 5000196 पे वॉइस नोट में यानी कि अपना आंसर रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। ये आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इनकी लाइफ का।
1: वो उस वक्त झूम बराबर झूम उनकी निकली थी और वो एड्स डायरेक्ट कर रहे थे। मैंने पूछा मुझे जॉब दे देगा तू, और उन्होंने मुझे एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब दिया। मैंने सोचा असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी अच्छी होगी, मैं सेट पर रोज जाऊंगा, एक्टरों से मिलूंगा।
0: 5000196 पर ये किसकी आवाज है? लोग अपनी अपनी तरह से गेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने जवाब भेज दिए। अगली बार जवाब के साथ लौटूंगा, लेकिन इन द मीनवाइल आप भी अपना जवाब भेजो ना। 5000186 मस्त मौला गौरव कर रहे हैं इंतजार मिर्ची पर आपका बरखुदार। इट्स हॉट
2: मिर्ची,
3: हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं?
4: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
4: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
5: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
4: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
4: ये स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
6: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
4: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
4: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
5: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
4: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
4: कौन बोल रहा?
3: रमेश बोल रहा हूँ सर। से
4: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
4: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
7: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
4: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
4: 2 दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
8: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
4: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
4: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
9: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
10: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, अब मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
11: थैंक यू
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
12: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हाँ जी, गाना खत्म हुआ नदियों पार और गाने पार आपको मिल गया। यस देवी और सजनों, शाम 5 बजे के बाद हम आप मिलकर खेलते हैं वो जिसे कहते हैं और पहचान कौन में आज की वॉइस कुछ यूं है।
1: वो उस वक्त झूम बराबर झूम उनकी निकली थी और वो एड्स डायरेक्ट कर रहे थे। मैंने पूछा मुझे जॉब दे देगा तू, और उन्होंने मुझे एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब दिया। मैंने सोचा असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी अच्छी होगी, मैं सेट पर रोज जाऊंगा, एक्टरों से मिलूंगा।
0: और बस मैंने यही पूछा कि बताइए ये किसकी आवाज, और देखिए जवाब आ गए।
2: हाय गौरव, गुड इवनिंग, इट्स आई थिंक इट्स रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, यस।
3: ओके, गुड इवनिंग गौरव
0: जी। जी
3: हाउ आर यू, कैसे हैं आप? यूसुफ है।
0: हाँ जी,
3: और वो आवाज है रणवीर सिंह द बर्थडे बॉय। ओके, थैंक यू, बाय
0: बाय।
4: हेलो गौरव भैया, दिस इज कुमार पांडे, कैसे हैं आप? ठीक है, मेरे को लगता है ये ऋतिक रोशन जी की आवाज है। थैंक यू, इट्स हॉट।
5: गुड इवनिंग बॉस, आपने एक सवाल पूछा है। मेरा नाम मोहम्मद इब्रार है, ये रणवीर कपूर की आवाज लग रही है मेरे को।
4: हेलो गौरव भैया, कैसे हैं आप?
0: ठीक है,
4: मैं कुमार पांडे बोल रहा हूँ, ये रणवीर सिंह की आवाज है, सॉरी ऋतिक रोशन नहीं, रणवीर सिंह की आवाज है। इट्स हॉट, थैंक यू।
6: हाय गौरव, गुड इवनिंग, द वॉइस दैट यू प्लेड इज ऑफ अर्जुन कपूर। ओके, थैंक यू
0: भाई। ये आवाज फिर से ध्यान से सुनिए जरा।
1: उस वक्त झूम बराबर झूम उनकी निकली थी और वो एड्स डायरेक्ट कर रहे थे। मैंने पूछा मुझे जॉब दे देगा तू, और उन्होंने मुझे एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब दिया। मैंने सोचा
0: भाई ये सब के सब ना गड़बड़ हो गए, क्योंकि सच्चाई है ये रणवीर सिंह की आवाज है। बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया है। यस, दिस इज ऑफ बर्थडे बॉय रणवीर सिंह, 41 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, आज उनका हैप्पी वाला जन्मदिन है। तो हमारी तरफ से अगला गाना उनकी ही उस पहली फिल्म से जिसको देखकर हम सब लुट गए थे, मिर्ची थॉट।
7: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जिंदगी में ज्यादा मीठा जो है डायबिटीज लाता है, और दुकान में ज्यादा मीठा ड्रिंक्स टैक्स ज्यादा। मस्त मौला गौरव आपको बता दें कि कतर जनरल टैक्स अथॉरिटी का यही रूल अब लागू हो गया है, जो है लेकर ज्यादा स्वीट एंड ड्रिंक्स को। #974 कतर जनरल टैक्स अथॉरिटी ने एक नया रूल निकाला है कि जितनी ज्यादा चीनी उतना ज्यादा एक्साइज टैक्स आपको देना होगा, और दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 6th of July, एंड इफेक्टिव 6 जुलाई से ये नया टीयर वॉल्यूमेट्रिकल मॉडल जो है वो शुरू हो जाएगा। ये वॉल्यूमेट्रिक मॉडल क्या है, जिसमें अगर आपका जो ड्रिंक आप सोल्ड आउट कर रहे हो वो स्वीटेंड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है या जूसेस हैं, अगर उसमें शुगर कंटेंट हाई है तो उसी के हिसाब से उसमें टैक्स कैलकुलेशन होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही कहता है भैया कि हेल्थ ड्रिंक के लिए और पॉकेट के लिए दोनों के लिए कम मिठाई बेहतर है। तो भाई ओवरऑल ये किस किस पर लगेगा, खासकर उस ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ेगा जिसमें शुगर लेवल्स काफी ज्यादा हाई होंगे, और टैक्स रिटर्न के लिए टैक्स पेयर्स को 90 डेज के अंदर धरीबा प्लेटफॉर्म पर रिटर्न सबमिट करना होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पैकेज्ड आइटम वाले ड्रिंक्स पर लगेगा, ये सील पैकेजिंग और पैकेज प्रोडक्ट्स पर वैलिड है। लेकिन जैसे आप फ्रेश जूस पी रहे हैं उस पर किसी तरह के कोई टैक्स का प्रावधान नहीं है। तो भाई कुल मिलाकर जितना कम मीठा पियोगे उतना ही टैक्स और डायबिटीज दोनों से बचे रहोगे। And I'm sure, जितना कम हम शुगर लेते हैं बॉडी में उतना ही अच्छा हमारी हेल्थ के लिए होता है। तो ज्यादा चीनी होने से चीटी लगती है और अब टैक्स भी। 89.6 मिर्ची वाली थॉट।
1: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center।

0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक. What is the ultimate fitness tip?
2: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आमतौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
1: Sleep well. Oh, फिर तो फिट होना मुश्किल है आमिर खान. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
7: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट.

हाँ जी नूरन सिस्टर्स का कमाल खत्म हुआ और आपके साथ धमाल करने आ गया। देवी और सजनों, हमारे पॉकेट में जब पैसे होते हैं तो धमाल रोज होता है, इसलिए पैसों को बहुत ध्यान से खर्च कीजिए और ज्यादा से ज्यादा घर भेजिए ताकि आप वहां भी अमीर दोस्तों में काउंट होते रहें। फिलहाल के लिए बारी आगे बताने की। वेल, सबसे पहले अगर बात करें तो यस, इंडियन रुपीज 26 रुपए 15 पैसे मिलने वाले हैं, यानी कि 26.15 अगेंस्ट 1 कतरियाल इंडियन रुपीज आपको मिलने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें श्रीलंकन रुपीज की तो आपको मिलेगा 1 कतरियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 91.84। अब इसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान रुपीज की, जनाब, वाहिद कतरियाल के बदले पाकिस्तान रुपीज जो आपको मिलेंगे वो होंगे 76.55 पाकिस्तान रुपीज। तपाई को नेपाली रुपीज का रेट आज 41.81 का भल्चर रेटर माइनी 41.81 नेपाली रुपीज का रेट आई। अगर इसके बाद हम बात करें बंधु बांग्लादेशी टका 1 कतरियाल के बदले 36.93 तो 33.93 बांग्लादेशी टका का रेट, ठीक है। तो बस बोलो गौरव यही कहेगा, जितना पैसा है आराम से कमाओ बचाओ घर भेजते रहो, सब जगह सबको खुश करते रहो, क्योंकि पैसा घर भेजोगे तो लोग खुश होंगे और आई पे ऐप से भेजोगे तो खुद के लिए भी कुछ खुशियां जुटाओगे, क्योंकि यहां मिलता है आपको वोडाफोन माई बुक का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, अपना सवाल क्या है वो बता बच्चू।
0: अरे भाई क्या बोलूं आपको, इधर घर ढूंढना इतना टफ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ?
1: अबे सबसे पहले तो ये बता कि तू किसका घर ढूंढ रहा है, तभी तो हेल्प कर पाऊंगा ना।
2: मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।

5001896 ये है नंबर। फटाफट दोनों गाने जो इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं गानों की मिक्सी में उसका जवाब भेज दो 5001896 पर वॉइस नोट में। गौरव ये या लिख के भेज दो यार, आज हम आपके आंसर्स पढ़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग अब इस गाने को पकड़ सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। आप बहुत ही तेज हैं, देखिए तेजी से लोगों ने भेजना शुरू कर दिया है 5001896 पर। कौन से ये दो गाने हैं जो इस वक्त गानों की मिक्सी में पीसे गए हैं?

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Hello, sir. Very good evening. सेल्यूलर से बोल रहा हूँ सर, हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊं। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
1: अच्छा,
2: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
1: के पास है क्या ये सर्विस?
2: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
1: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस
2: का? सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
1: ठीक है,
2: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
1: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
2: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
1: ये क्या है भैया?
2: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
1: तो मशीन चलाने आती भी है
2: सर? मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे? देखिए
1: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
2: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
1: मजाक कर रहे तू मेरे से?
2: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं
3: रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
2: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया है, डबोगे
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन, फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो देयर्स मोर, with the import duty revision in India you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
6: tareek par tareek milti rahi hai lekin insaaf nahi mila milord.
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
8: दोनों मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6
10: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हाँ जी 89.6 मिर्ची वन पर हमारी ही गली में हो, नाम है मेरा
1: मस्त मौला गौरव।
0: और जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मैं इस घंटे कॉन्टेस्ट खेलता हूँ जिसे कहते हैं
2: गानों की मिक्सी।
0: गानों की मिक्सी में पीस देते हैं दो गानों को, और आज के गाने हैं

0: है, लोग तैयार हैं अपने अपने जवाब के साथ, लेकिन सबसे पहले उस शख्स का जिन्होंने जवाब में रिकॉर्ड करके भेजा कि गौरव भाई ये जो आप अभी आवाज सुना रहे थे वो कुछ यूं हैं।
1: दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम।
0: हाय हाय क्या बात है,
2: तुम ही हो अब तुम।
0: अरे वाह, डुएट चल रहा है।

0: दगा नहीं करेंगे सनम।
1: जोरदार ताली भाई। हमारे अगले मिर्ची सुपर सिंगर की डुएट जोड़ी मिल गई ऐसा लग रहा है। फिलहाल के लिए मस्त मोनो गौरव आपके साथ है और बहुत सारे लोगों ने लिख कर जवाब भेजा, उनको भी दिल से शुक्रिया। एक एक करके पढ़ देता हूँ। हस्बैंड एंड वाइफ ने मिलकर किया, यस जितेश भाई और उनकी वाइफ, आपको थैंक यू सो मच। इम्पा ने भी बताया दिल दे दिया है, एंड इसके अलावा अब तुम ही हो वेल। इसके बाद जुनेद हियर, दर्द दिलों का कम हो जाता सॉन्ग प्ले कर दो। अरे कर देंगे मेरे भाई, रुक जाओ। हाय गौरव, दिस सॉन्ग आर दिल दे दिया है, तुम ही हो, मोहम्मद खान हियर। इसके अलावा खयाम अख्तर भाई ने लिखा है, रुख जिंदगी का मोड़ लिया, हम तेरे बिन रह नहीं सकते। लेकिन रुख जिंदगी का मोड़ लिया वाला गाना कौन सा है ये बताने में जब बोलेंगे तो फंस गए आप हैं खयाम भाई। इसके अलावा भाई अब्दुल भाई जिन्होंने कहा है रुख जिंदगी ने मोड़ दिया, ऐसा कभी सोचा नहीं था ऐसा। अरे भाई पूरे पूरे गाने की लिरिक याद रखी है। थैंक यू राहुल जिन्होंने एकदम सही जवाब दिया है, हम तेरे बिन तुम ही हो एंड दिल दे दिया है। इसके अलावा थैंक यू कहेंगे हम अंशुल भाई को जिन्होंने कहा है दिल दे दिया है तुम ही हो। वेल इसके अलावा थैंक यू कहना चाहेंगे सचिन को, दिल दे दिया है तुम ही हो। एंड ये है हमारे अरफीन भाई, लिखा है दिल दे दिया है अब तुम ही हो, अब तुम ही हो, बहुत सही। इसके अलावा थैंक यू कहना चाहेंगे हम सुशील जी को जिन्होंने लिखा है दिल दे दिया है तुम ही हो। इसके अलावा एक और थैंक यू बनता है नीरज भाई को, दिल दे दिया है तुम ही हो। यार सबने बता दिया, जोरदार तालियों के साथ सबको थैंक यू। सारे गाने सही पकड़े हैं भाई, एंड ऐसे में अब आनंद राज आनंद जी आप गाई दो यार, इमोशनल हो गए हम। मिर्ची इट्स हॉट।

0: हाँ जी, नैना का ही तो कसूर है, नैनो से ही तो सब शुरू होता है।
1: मस्त मौला गौरव।
0: फिलहाल आपके साथ है देवी और सजनों। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किस तरह से हमारे कतर में तैयारियां हो रही हैं और बहुत ही तेजी से हो रही हैं। लगातार बच्चों के लिए यहाँ पर इवेंट पे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और अगर बात करें तो यस, हमारे कतर में बहुत सारे समर कैंप चल रहे हैं जो बच्चों को बिजी रखें। और ऐसे में अब कतर ने लॉन्च किया है समर कैंप विद पार्टिसिपेशन ऑफ नियरली 190 स्टूडेंट्स। कटारा कल्चरल विलेज फाउंडेशन में 2026 का समर कैंप शुरू हो गया है। यहां पर कल्चरल, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक प्रोग्राम्स है दो लड़के लड़कियों के लिए अंटिल 29th ऑफ जुलाई। एंड बड़ी बात यह है कि इसके अलावा भी कतर के कोने कोने में कोई ना कोई समर कैंप चल रहा है। तो अगर आपके बच्चे इस बार घर नहीं गए हैं, वो यहीं कतर में हैं, तो उन्हें जरूर समर कैंप में थोड़ा एक्टिव करो। मैं हमेशा कहता हूँ ये छुट्टी का टाइम है, बच्चों को लगता है बाहर गर्मी है, घर में ही बैठो टीवी देखते रहेंगे और गेम्स खेलते रहेंगे, लेकिन नहीं, उनको इस तरह के समर कैंप्स में जब हम डालते हैं तो कहीं ना कहीं हम इम्पॉर्टेंट तरीके से उनको फ्यूचर के लिए भी तैयार करते हैं, जहाँ पर उनके अंदर कॉम्पिटिशन की भावना जगी रहनी चाहिए। इस उम्मीद में कि आप अपने संग बच्चों को वर्ल्ड कप के मैचेस तो दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ समर कैंप भी लेकर जा रहे हैं। मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है 89.6 मिर्ची 1 पर। मुझे अपने बचपन के समर कैंप याद आते हैं, तब ना ऐसे कोई समर कैंप नहीं होते थे, मोहल्ले के लड़के अपना मिलके एक समर कैंप बनाते थे लड़कियों के साथ, और फिर अलग अलग दिन अलग अलग कॉम्पिटिशन हो रहा है, हाँ जी, अलग अलग खेल खेल रहे हैं। मुझे आज भी याद है कैसे हम लोगों ने गुड्डा गुड्डी की शादी समर कैंप का सबसे बड़ा कैंपेन चलाया था, और उसमें बाराती में बारबी और बारबी के फ्रेंड्स भी आए थे। 89.6 मिर्ची वाली
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद,

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
0: आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM, मिर्ची वन।
4: It's hot.

0: पास के लिए दिमाग नहीं लगाना है, सीधे अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ जाना है। यस, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब आपके लिए एक और बड़ी डेवलपमेंट हो गई है।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: कतर एयरवेज, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मिलकर एक नया बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च किया है। अब बार बार जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स या बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत आपको पड़ती थी वो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपका चेहरा ही आपका डिजिटल बोर्डिंग पास बन जाएगा। यस, चेक इन के वक्त एक बार आपको बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनानी होगी, उसके बाद बैग ड्रॉप कीजिए, सिक्योरिटी और बोर्डिंग गेट्स पर सिर्फ फेस से आपका स्कैनर हो जाएगा, कोई बोर्डिंग पास वास की जरूरत नहीं। हालांकि कतर एयरवेज के उन पैसेंजर्स के लिए ये वाली सुविधा है जो अभी 18 प्लस है और जिनकी जर्नी ही स्टार्ट हो रही है दोहा से। वेल, ये फिलहाल सिर्फ कतर एयरवेज के उन पैसेंजर्स के लिए है जो 18 प्लस है। इस बात को याद रखेगा, आप या तो फिर कतर एयरवेज पर प्री रजिस्टर कर सकते हैं या फिर एयरपोर्ट के रो 3 पर सारे सेल्फ सर्विस कियोस्क पर जाकर भी इसे सेटअप कर सकते हैं। ये सर्विस फिलहाल पैसेंजर्स विद डिसेबिलिटीज के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना है अगर आप डिसेबिलिटीज के साथ जाते हैं हमारे कतर में। लेकिन आने वाले टाइम में ये आपके लिए भी सर जल्दी से जल्दी पाइपलाइन हो जाएगी। अगले सफर के लिए लाइन में लगने की तैयारी बिल्कुल छोड़ो, बायोमेट्रिक अपनाओ और फटाफट से इस डिजिटल वाले फेस रिकॉग्निशन से ही पास कर जाओ। 89.6 मिर्ची 1, यार कुछ अलग ही करता है हमारा कतर है। मिर्ची थॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: हमारी काम वाली बाई बहुत ही रेगुलर है, हर दूसरे दिन नहीं आती, क्या करूं?
1: वेल इट्स सो सिंपल यार, हर दूसरे दिन नहीं आती ना, तो उसको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम पे रखा कर। या इट्स जस्ट अमेजिंग, फैंटास्टिक, सिंपल।
2: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension। तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Our business is our business. None of your business.
4: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
5: entertainment. Qatar का number one radio station.
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: अरे इसी ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी ने ब्राजील के अरमानों पे पानी फेरा है। फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम 7:03 से ज्यादा।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील अपने छठे खिताब को देख रही थी, लेकिन अब उससे कोसों दूर हो गई और इसी के साथ फुटबॉल से दूर हो गए हमेशा के लिए नेमार जूनियर। यस, बता दें ब्राजील वर्सेस नॉर्वे का मैच था एंड नॉर्वे ने ब्राजील की टीम को 2-1 से हरा कर उन्हें वर्ल्ड कप से अलविदा कहला दिया। शानदार गेम देखने को मिला जहां नॉर्वे के हालैंड ने 2 गोल मारे। अब नॉर्वे का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में होने वाला इंग्लैंड से, वहीं फ्रांस भिड़ने वाली है 9 जुलाई को मोरक्को से, और बाकी 2 गेम्स कौन कौन से होंगे उसके लिए आज रात 10 बजे एक और चैंपियन आगे आएगा, पोर्चुगल या स्पेन। क्या रोनाल्डो अपना सपना पूरा करने के एक कदम और करीब बढ़ेंगे या फिर स्पेन उनके सपनों पर ब्रेक लगाएगा। इसके अलावा स्विट्जरलैंड कोलंबिया का मैच, उसके अलावा अर्जेंटीना इजिप्ट का मैच जो कल होना है, मतलब कुल मिला कर अब वर्ल्ड कप धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ता हुआ, जहां पर मुश्किल से आपको लगभग 10 मैचेस बाकी रह गए। ये बताते हुए मुझे ये बड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि यार एक प्लेयर को रेड कार्ड मिलता है क्योंकि उसने सामने वाले खिलाड़ी पे डेंजर तरीके से टैकल किया था, लेकिन उसके बावजूद जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फोन किया कि यूएस के इस खिलाड़ी पर इतना कठोर कार्रवाई मत करो, तो जियानी इन्फेंटिनो साहब का दिल पिघल गया और उन्होंने उस खिलाड़ी का सस्पेंशन टाल दिया है। अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है फुटबॉल में। खैर चलो जी, जो भी है वो वक्त के साथ पता लगता जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि एक चैंपियन आज शायद अलविदा कहकर जाएगा, इधर स्पेन या फिर पोर्चुगल, क्योंकि लोग इनको इस बार बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। एक तरफ यमाल, दूसरी तरफ रोनाल्डो। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। मस्त मौलक और आगे बढ़ता है 89.6 मिर्ची 1 पर। इट्स हॉट।

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. Na vietvala burga. Milchi, burga.
1: Hello.
2: Hello, Tejinder ji.
1: हाँ जी
2: तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
1: जी, हाँ जी किया था।
2: हाँ, ये तेजेंद्र जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
1: कितना लेट मिलेगा
2: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे, इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
1: हाँ जी,
2: एक सेकंड। हाँ, इमरजेंसी का है सर। 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
1: 3.5 महीने बाद?
2: हाँ जी
1: भाई साहब। तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
2: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपके आसपास कोई है तो नहीं?
1: नहीं, कोई नहीं है।
2: मैं ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
1: अच्छा।
2: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
1: क्या बोल रहा है भाई? कौन? हेलो।
2: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप फिक्र मत करो, वो बंदा ही।
1: हेलो।
2: हाँ, बोलिए बोलिए।
1: क्या बोल रहा भाई?
2: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
1: मैं बोल रहा हूँ,
2: मैं पासपोर्ट ऑफिस से ही बोल रहा हूँ।
1: क्या बोल रहा है? क्या
2: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
1: नहीं, नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
2: यार। आप मेरी तेजेंद्र जी,
1: नहीं
2: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा। 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार, आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा 1.5 महीने के लिए। आपका नाम यूज कर रहा है, आपका नाम यूज करने में आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो?
1: नाम बता पहले। कौन रहा है?
2: ये लकी ड्रॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप इसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजू।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
7: हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: जिंदगी में ज्यादा मीठा डायबिटीज लाता है और कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा मीठा ज्यादा टैक्स। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे कतर में जनरल टैक्स अथॉरिटी ने एक ऐसा ही नया रूल निकाल दिया है
1: #974974
0: इफेक्टिव फ्रॉम July 6 इसकी शुरुआत हो गई है, जहां पर जनरल टैक्स अथॉरिटी ने क्लियर किया है कि जितनी ज्यादा चीनी होगी उतना ही ज्यादा एक्साइज टैक्स देना होगा आपको पैक्ड जूसेस एंड ड्रिंक्स के लिए। यस बता दें इसे टियर्ड वॉल्यूमेट्रिक मॉडल कहते हैं। इसमें जितना स्वीटेंड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स या जूसेस होगा शुगर कंटेंट के हिसाब से उस पर उतना टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि हेल्थ के लिए भी और पॉकेट के लिए भी कम मिठाई अब बेहतर है भैया। बिल्कुल मिलाकर कतर में हाई शुगर बेवरेजेस को टारगेट करते हुए सिर्फ और सिर्फ उन ड्रिंक्स पर टैक्स भेजा जाएगा जिसमें शुगर लेवल्स काफी ज्यादा हाई है। टैक्स रिटर्न की टाइमलाइन टैक्स पेयर्स को दी गई है 90 डेज के अंदर धरीबा प्लेटफॉर्म पर वो रिटर्न सबमिट करने होंगे और सिर्फ पैकेज आइटम्स पर ये टैक्स लगने वाला है। याद रखेगा जो फ्रेश जूसेस हम पीते हैं, जो सामने हमें जूसेस मिलते हैं कैफेटेरिया से लेकर कुछ टी शॉप्स पर, उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। वैसे जितना कम मीठा पियोगे उतना ही टैक्स और डायबिटीज दोनों से बचे रहोगे, समझ लो। एंड मुझे लगता है एक शानदार नियम जो आने वाले टाइम में लोगों को और फिट एंड फाइन एंड हेल्दी बनाएगा, इसी उम्मीद में कि आगे ऐसे ही और भी ढेर सारे टैक्सेस हमारे और आपकी जिंदगी में फिटनेस को लेकर आएंगे। मस्त मौलोगर आगे बढ़ता है मिर्ची पर। इट्स हॉट
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां, कुछ भी बना दिया बेसिर पैर की स्टोरीज, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखी, वेब सीरीज में देखी, पर ये वाली अलग है। सच्चाई से इंस्पायर्ड एक ऐसी कहानी जिसको आप अब Z5 पर देख सकते हैं। बात करो मैं सतलज की, यस, किस तरह से जसवंत सिंह डिसअपीयर होते हैं, लेकिन एक बार जब लोगों को लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, तब आते हैं वो जसवंत सिंह बाहर। यस, दिलजीत दोसांझ जिस रोल को प्ले कर रहे हैं, फिल्म में अर्जुन रामपाल भी हैं, एंड कहा ही जा रहा है अगर सब कुछ ठीक है तो ये नेवर सीन बिफोर अवतार है अर्जुन रामपाल का, ऑनेस्ट, ब्रूटल, रॉ, एक्सेप्शनल। एंड कह सकता हूं मैं जसवंत सिंह की ये कहानी जिसे बहुत हद तक दफनाने की कोशिश की गई, लेकिन इतिहास को कभी दफनाया नहीं जा सकता, वो खुद ब खुद भविष्य में बाहर आता ही है। और ऐसी एक कहानी आपको देखने को मिलेगी सतलज Z5 पर। इस मूवी को जरूर देखिए, विल कम टू नो क्या खूबसूरत तरीके से इसे डायरेक्ट किया गया है। एंड अर्जुन रामपाल, दिलजीत दोसांझ जब सतलज में साथ आएंगे तो एक तरह से एक ऐसी कहानी जिसे कभी दफनाया नहीं जा सकता। हिंदी Z5 पर आप इसे जरूर देखें, और मुझे पूरा यकीन है आप कहेंगे गौरव अ गुड रिकमेंडेशन। अगर अभी तक आपने Z5 का सब्सक्रिप्शन लिया, देखो इसका सब्सक्रिप्शन लेकर, विश्वास करो ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने कभी पहले सुनी नहीं है, लेकिन सच्चाई को और कितने दिन छुपाया जा सकता था, फाइनली बाहर आ गई है, देख लो। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: मेलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
2: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मेलिन सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

नयन तो तरस जाते हैं मानसून के लिए मेरे, लेकिन कतर में हमारे मानसून नहीं होता, हमारे वहाँ होती है ह्यूमिडिटी। यस, मानसून तो तब आता है जब मौसम एकदम बेहतरीन हो जाता है, एंड जिस तरह का मौसम है उसको देखते हुए वर्क आवर्स पर बैन है एंड बहुत सारे लोग उसको वायलेट कर रहे हैं। इसी को ध्यान रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अर्ज किया है कि इस तरह के किसी भी वायलेशन को आप जरूर रिपोर्ट कीजिए। समर वर्किंग आवर्स रेगुलेशन जो लगाए गए हैं वो बेसिकली इन सारे लेबर भाइयों की सेफ्टी के लिए है, उनकी हेल्थ रिक्वायरमेंट ठीक रहे उसको ध्यान में रखते हुए। याद रखिए, June 1st to September 15th सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक आउटडोर वर्क बैन है। इस बात को आप हर मजदूर भाई को समझाइए, और कोई अगर इस चीज को वायलेट कर रहा है, किसी की मजबूरी में उसको करना पड़ रहा है, तो उसे बोलिए आप इस वायलेशन को कॉल कर सकते हैं 4048-8264 पर। आई रिपीट, 4048-8264 पर, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं info@mol.gov.qa। इस पर आप रिपोर्ट कर सकते हो। आई एम श्योर मजदूर भाइयों की सेहत का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हमारे कतर को खूबसूरत यही बनाते हैं, इनकी सेहत भी चुस्त तंदुरुस्त रहे, इसका ख्याल हमें रखना है। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्मोला गौरव फिलहाल ले रहा अलविदा, इस उम्मीद के साथ कि हर दिन के साथ धीरे धीरे गर्मी घटे, यही हम सूरज चाचू से दुआ करेंगे। मिर्ची इज हॉट हबीबी, मस्सलामा।

0: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं।
2: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
3: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: हर फ्राइडे बॉलीवुड हमें बताता है कि उसने इस हफ्ते क्या बनाया, लेकिन हर मंडे ऑडियंस बॉलीवुड को बता देती है कि उसने क्या रिजेक्ट किया। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। आज सिर्फ बड़े स्टार्स काफी नहीं है, सिर्फ बड़े बजट्स काफी नहीं है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया भी काफी नहीं है। अच्छी फिल्म हो तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं, लाइक मैं वापस आऊंगा। बुरा रीमेक हो तो लोग उसे छोड़ भी देते हैं। और जो चीज कभी सिर्फ पोस्टर्स और प्रमोशंस डिसाइड करते थे, आज वो प्लेलिस्ट, रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ डिसाइड करते हैं। यानी बॉलीवुड बदल रहा है, लेकिन उसे बदल कोई और नहीं रहा, आप बदल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ड्रॉप ऑफ द मिर्ची टॉप 20। मैं हूं आपका ट्रैवल बडी ऑन दिस राइड सुरेन सुंदरम। एंड वो मंजर आ गया है जहां एक गाने को 13 महीनों बाद शायद हम अलविदा कहने जा रहे हैं। हर जेनरेशन अपनी मोहब्बत को एक गाने में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। शायद इस जेनरेशन के लिए वो है सैयारा। नॉट जस्ट अनदर हिट सॉन्ग, ये वो गाना था जिसमें लाखों लोगों ने अपना प्यार, अपना इंतजार और अपना टूटना छुपा दिया। वक्त बदलेगा, महीने बदलेंगे, पर सालों बाद कहीं दिल के किसी कोने में एक सैयारा छुपा होगा।
4: नंबर 20।

कभी कभी बॉक्स ऑफिस एक बहुत खूबसूरत बात सिखा देता है। मैं वापस आऊंगा उसका जीता जागता सबूत है। फिल्म ने शोर मचाकर नहीं, लोगों का दिल जीत कर अपनी जगह बनाई। और शायद हिंदी सिनेमा भी धीरे धीरे कुछ और सीख रहा है। बहुत सालों तक बॉलीवुड ने हमें एक ही तरह की हीरोइन दिखाई, एक तरह का चेहरा, एक तरह की बॉडी, जिसे प्यार सिर्फ कुछ लोगों को ही सूट करता हो ऑन द स्क्रीन। फिर आई अंजलि आनंद, टीवी की सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मर्स में से एक, और फिर उन्हें मिली एक फिल्म।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टेड बाय करण जौहर हिमसेल्फ। अब उसमें अंजलि का रोल छोटा था, लेकिन वो रोल बन गया बेहद यादगार। एंड अब धमाल 4 में वो सिर्फ फ्रेम का हिस्सा नहीं है, वो लव स्टोरी का हिस्सा है। और मुझे लगता है ये कास्टिंग सिर्फ एक कास्टिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि हीरोइन होने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं, परफेक्ट ऑनेस्टी चाहिए होती है। और अंजलि में वो ऑनेस्टी साफ नजर आती है। सच कहूं, अगर हिंदी सिनेमा वाकई बदल रहा है तो उसकी पहचान उन चेहरों से होगी जिन्हें देखकर ज्यादा लोग कहेंगे ये तो हम जैसे लगते हैं, ये तो हम ही हैं। नंबर 18 पर इस हफ्ते एक नई एंट्री हो रही है, मराठी सेंसेशन संजू राठौड़ की आवाज में रितेश देशमुख और अंजलि आनंद पर पिक्चराइज। दिस वन इज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इस गाने का नाम है साड़ी, फ्रॉम धमाल 4। नंबर 18।

व्याह करवा दो जी, इस हफ्ते नंबर 17 पर है, लेकिन मेरी नजर गाने पर नहीं, हमेशा उसके टाइटल पर ही जाती है। है जवानी तो इश्क होना है, और मुझे सच में लगता है कि बॉलीवुड को फिर से लंबे टाइटल्स याद आने लगे हैं। देखो, हम 90s वाले लोग एक अजीब सी लग्जरी के साथ बड़े हुए थे। उस जमाने में फिल्म के टाइटल सिर्फ नाम नहीं होते थे, पूरे के पूरे इमोशंस होते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमारा दिल आपके पास है, कभी खुशी कभी गम, एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट टू ऑफ माय फेवरेट्स, बोथ ऑफ देम वर सलमान खान फिल्म्स। नंबर 1 पर

0: और ऐसा लगता था जैसे पोस्टर देखने से पहले ही फिल्म आपसे बात कर रही हो। फिर सिंप्लिसिटी ट्रेंड बन गई, अल्फा, एनिमल, सिकंदर, धुरंधर, एक शब्द, एक पंच। सर्च करने में वैसे आसान भी होता है, लेकिन याद रहने के लिए सिर्फ छोटा होना काफी नहीं होता। शायद इसलिए 25-30 साल बाद भी हम उन पुराने टाइटल्स को आज भी पूरा बोलते हैं, एक भी लफ्ज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो टाइटल्स नहीं थे, वो बॉलीवुड की वोकैबुलरी बन गए थे। नंबर 16 पर इस हफ्ते वी हैव गॉट द टू वर्ड्स कॉल्ड भूत बंगला, जिसका गाना तू ही दिसदा इज ट्रैकिंग वेल विद द ऑडियंस। लेकिन लंबी टाइटल वाली फिल्मों को याद करते हुए, हियर इज अ मॉडर्न डे फिल्म विद द लॉन्गेस्ट टाइटल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसका शायद सबसे पॉपुलर एंड येट सबसे खूबसूरत गाना मोहित चौहान इन सुपर फॉर्म, ये है पीलू। प्रीतम दा का म्यूजिक, इरशाद भाई का लिखा, बनाते इसको इस हफ्ते का रिवाइंड।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
4: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
3: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
4: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 8.

I've never cared about box office numbers. मुझे सच में कभी फर्क नहीं पड़ा. अगर पड़ा होता तो पान सिंह तोमर, कहानी, तनु वेज मनु और क्वीन जैसी फिल्में मैं थिएटर्स देखने कभी नहीं जाता. बट 2026 में numbers have started meaning something, right? Cocktail 2 ने अभी हाल फिलहाल ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. एक वक्त था जब ये बड़ी न्यूज हो सकती थी, आज ये बस एक नंबर लगता है. और शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमने फिल्मों को देखना कम, उन्हें कंपेयर करना ज्यादा शुरू कर दिया है. एक तरफ धुरंधर जैसी इवेंट फिल्म्स हैं, जिन्हें देखना सिर्फ फिल्म देखना नहीं, एक कल्चरल मोमेंट बन जाता है. नंबर 6.

गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर इज ऑन नंबर 6, एक ऐसी फिल्म जो 3,000 करोड़ के फिगर्स टच कर रही है। एंड देन दूसरी तरफ वो फिल्में जो शायद ओपनिंग वीकेंड की हेडलाइंस ना जीतें, लेकिन वक्त जरूर जीत लेती हैं। सबसे बड़ा नुकसान कलेक्शंस का नहीं हुआ, उस बीच वाली फिल्म का हुआ। वो फिल्म जो ना फ्रेंचाइज थी, ना सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा थी, ना उसके पास 500 करोड़ का बजट था, बस एक ईमानदार कहानी होती थी उन फिल्मों में और उसे कहने का हौसला होता था। सच कहूं, मुझे हिंदी सिनेमा का वही चेहरा सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि उसी ने हमें कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हम बॉक्स ऑफिस से नहीं अपने दिल से याद रखते हैं। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से है, दम लगा के हायशा अपॉन की आवाज में। दिस इज मोमो के धागे। Special request song. Yeah,

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
4: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
3: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
4: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
3: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
4: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
3: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: और शायद जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
8: नंबर 2.

0: सिर्फ चार ही हफ्तों में ऊंचा लंबा कद हैज क्लाइम्ब टू नंबर टू। पुराना हुक, नई पैकेजिंग एंड मुझे आनंद राज आनंद साहब के लिए इतनी खुशी हो रही है। उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन की हैं एंड द मैन डिजर्व्स इट ऑल। और एक बार फिर बॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि सीक्वल सिर्फ फिल्मों के नहीं होते, गाने भी दूसरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक सीक्वल ऐसा भी आ रहा है जहां एक्साइटमेंट फिल्म से ज्यादा उसके म्यूजिक को लेकर है, आवारापन 2। और शायद उसकी वजह यह है कि आवारापन को कल्ट उसकी कहानी ने नहीं, उसके म्यूजिक ने बनाया था। दो गाने ऐसे आए थे जो कभी किसी की प्लेलिस्ट से बाहर ही नहीं निकल पाए।
1: तो फिर आओ मुझको सताओ।
0: And then the one that became a timeless heartbreak classic.

हर सीक्वल पहली फिल्म से बड़ा बनना चाहती है, लेकिन आवारापन 2 को सिर्फ एक चीज मैच करनी है, अपनी वो साउंडट्रैक। और यकीन मानिए, वो एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज है, क्योंकि कुछ एल्बम्स सिर्फ हिट नहीं होती, वो एक जेनरेशन की यादों में परमानेंटली डाउनलोड हो जाती हैं। अगर आवारापन 2 ने वही एहसास फिर से जिंदा कर दिया, तो मिलेनियल्स सिर्फ टिकट्स नहीं खरीदेंगे, वो अपनी यादें दोबारा जीने जाएंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 20 हफ्तों से यादें नहीं, हिस्ट्री लिख रहा है एक और साउंडट्रैक। 20 हफ्ते ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड नंबर वन, रील से लेकर शादियों तक इंडिया का नंबर वन गाना। जैस्मिन सैंडलर्स, मधुबंती बागची शरारत करने वाले हैं फिर से। नंबर वन।

0: इतने गाने, लेकिन इनमें से कितने अगले हफ्ते तक रह पाएंगे और कितने सालों बाद भी साथ रह जाएंगे। इस सफर का हिसाब किताब हम ही रखते हैं, लेकिन इस बार का हिसाब होता है खत्म। शरारत कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन सॉन्ग। मिर्ची टॉप 20 विल बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। तो अगली बार तक सिरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
3: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
2: मेरे घर के पास बहुत कबूतर है, परेशानी होती है यार, क्या करूं?
3: तुम्हें जब पता है कि इतने सारे कबूतर हैं, तो घोंसले के बाजू में घर मत बना, समझा?

पुरानी फिल्मों के रोमांटिक सीन्स में से ना एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये सत्य भी सत्ता फिल्म से है, जब अमिताभ बच्चन साहब हेमा मालिनी जी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो इनको खास पसंद नहीं कर रही होती हैं, तो अमिताभ बच्चन इनके लिए फूलों का गुलदस्ता लाते हैं, इनके घर की बेल बजाते हैं, वो दरवाजा खोलती हैं, वो गुलदस्ता ऑफर करते हैं, वो थोड़ा गुस्से में दरवाजा बंद करती है, तो क्या होता है कि गुलदस्ते में से गुल फूल जो है वो दरवाजे में फंस के घर के अंदर रह जाते हैं, और दस्ता जो है खाली डंडियां कांटे जो है वो अमिताभ बच्चन के हाथ में रह जाते हैं। फिर हेमा मालिनी जी उन फूलों को देख के ऐसे थोड़ी पिघल जाती हैं और उन्हें अमिताभ बच्चन पे प्यार आ जाता है, और बैकग्राउंड में फीमेल वोकल्स हमिंग साउंड। यस, ये सीन इस फिल्म के बहुत ही खूबसूरत गाने में है जो हम अभी सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
5: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
3: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
5: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
3: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
5: हाँ जी,
3: हाँ बोलिए।
5: 33501।
3: अच्छा
5: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
3: हेलो,
5: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
6: हाय।
5: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
6: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
5: धोबी से
6: पूछ लीजिए।
5: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
3: हेलो
5: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
7: ये बेल जा रही है।
5: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
3: अरे भाई तू एक बात सुन, ये आपके हो
5: पास
3: क्या है?
5: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
3: किससे पूछे जा रहे हैं?
5: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
3: ये क्या कंफर्म भाई, मेरा एटीएम कार्ड है
5: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
3: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना
5: होता है। आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते हैं।
7: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
3: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
3: अरे मैं कुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
9: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
10: हमारी चोरियाँ छोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
10: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: बहुत कम उम्र में परेशानियों ने म्यूजिक कंपोजर जयदेव साहब का हाथ पकड़ लिया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। माँ बाप को कम उम्र में खो देना, घर की जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठा लेना, खुद शादी नहीं करना, लेकिन एक चीज जिसका हाथ जयदेव साहब ने पकड़ के रखा वो था उनका संगीत। संगीत सीखने की धुन में वो अलग अलग शहरों में भटकते रहे, फाइनली लखनऊ पहुंचे अपने गुरु अली अकबर खान से संगीत सीखने। उन्हीं के साथ बॉम्बे भी गए। गुरु चेले दोनों ने नवकेतन फिल्म्स में काम करना शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी गुरुजी का दिल बॉम्बे नगरी से भर गया। वो वापस चले गए लेकिन जयदेव साहब वहीं रह गए। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: नवकेतन में चूंकि मैं परमानेंट मुलाजिम था तो चेतन आनंद साहब ने बर्मन दादा से पूछा कि दादा हमारे पास जयदेव है। उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ जयदेव को अच्छी तरह से, तो क्या आप उसको हमारी फिल्म के लिए, सिर्फ हमारी फिल्म के लिए अपना असिस्टेंट एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि दादा के बहुत असिस्टेंट थे उस वक्त, कहा मैं जयदेव को लूंगा। और बाद में धीरे धीरे मैं उनका चीफ असिस्टेंट बना। इसी बीच में मुझे अपनी फिल्म जोरूगा भाई, इंडिपेंडेंट फिल्म, किनारे किनारे, ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही।
0: जयदेव साहब ने बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक क्रिएट किया, लेकिन सैडली उनकी मेजोरिटी ऑफ फिल्म्स चली नहीं, पर उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको पता है बॉम्बे नगरी से जब उनका मोह भंग हो जाता था वो हरिद्वार या ऋषिकेश चले जाते थे और वापस आकर फिर औसम म्यूजिक क्रिएट करते थे। उनकी तीन फिल्मों के म्यूजिक को नेशनल अवार्ड मिला है, रेशमा और शेरा, अनकही और गमन, जिसका ये ब्यूटीफुल सॉन्ग हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
4: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
3: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
4: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

चांदनी फिल्म से सिर्फ श्रीदेवी ही सेंसेशन नहीं बन गई थी, उनकी कॉस्ट्यूम्स, उनका फैशन, उनकी ड्रेसेस भी सेंसेशन बन गई थी। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके वो व्हाइट चूड़ीदार कुर्ता, कमीज, लहरिया दुपट्टा, उनके शिफॉन की साड़ीज क्या पॉपुलर हुई थी भाई, खास करके उनके वो सूट। ऐसा ही कहा जाता था बाजार में, वो चांदनी स्टाइल सूट दिखाना। इनफैक्ट आज भी ऐसा होता है कि कोई अगर पूरे सफेद कपड़ों में ड्रेस्ड है लड़की, तो उसे बोला जाता है कि तुम तो बिल्कुल चांदनी बन गई भाई। ये होती है लेगेसी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक। What is the ultimate fitness tip?
4: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आम तौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
3: Sleep well. ओहो हो हो, फिर तो फिट होना मुश्किल है आमिर खान। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: Qatar ka number one radio station.
9: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

नमक हराम फिल्म का ये गाना हमने सुना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये फिल्म देखो ना, असरानी साहब को एक सीन में जरूर देखना। वो कुछ होली का सीन होता है जहाँ ये भांग वांग पी लेते हैं, और वो भांग जो इनको चढ़ती है ना, वो जो सीन्स दिखाए गए हैं, वो कॉमेडी सीन्स जो दिखाए गए हैं, उसमें असरानी साहब की क्या परफॉर्मेंस है। मेरा ना बड़ा कुछ बताने का मन कर रहा है, लेकिन ऐसे स्पॉइलर जैसे हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखी फिल्म तो मजा खराब हो जाएगा आपके लिए। देखिए, लेकिन याद नहीं आ रहा तो दोबारा से देखो, बड़ी ही मजेदार कॉमेडी है वो। खैर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो नींद आ जाती है।
3: क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
1: क्या करूँ?
2: अरे घोचू, तो लेटे लेटे पढ़ना, अच्छे से सो भी पाएगा रे तू।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: हल्लो, ये बात तो मुझको पता ही नहीं थी।
1: मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: ये बात कि रेखा की सिस्टर जिनका नाम राधा था, वो एक मॉडल थी और तमिल फिल्मों की एक्ट्रेस भी थी। इनफैक्ट उनको बॉबी फिल्म, जी वही डिम्पल कपाड़िया ऋषि कपूर वाली बॉबी फिल्म, उसमें हीरोइन का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि फिल्मों में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली उनको मॉडलिंग ज्यादा पसंद थी और ये जगमग चकमक फिल्मी दुनिया वाली लाइफ इन्होंने काफी जल्दी छोड़ दी थी। अपने बचपन के दोस्त, जो बाद में जाके इनके बॉयफ्रेंड भी बने, उनसे शादी करके जाके ये यूएस में सेटल हो गई थी।
1: सही है भाई, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं।
0: इनको ये ग्लैमर चकाचौंध मिल रही थी, इनको नहीं चाहिए थी। जिनको नहीं मिलती उनको चाहिए रहती है, यही तो लफड़ा है जीवन का। जिसको जो मिलता है वो उसको चाहिए नहीं, जो उसको चाहिए वो उसको मिलता नहीं। फिलहाल मुझे चाहिए आपके चेहरे पे मुस्कान जो जाए कान तक, और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
0: Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only.

पुरानी फिल्मों की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फैशन स्टेटमेंट्स या इसे ट्रेंड सेटर भी बोल सकते हैं हम। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी के गाने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे में मुमताज जी ने जो साड़ी पहनी थी, वो गॉर्जियस ऑरेंज साड़ी जिसने ऐसे हड़कंप मचा दिया था फैशन इंडस्ट्री में उस टाइम। तब तक साड़ी को एज ए ट्रेडिशनल अटायर देखा जाता था, लेकिन जिस तरह से मुमताज जी ने पहनी, उसमें डांस किया, उसे कैरी किया, साड़ी को एक ग्लैमरस ट्रेंडी पार्टी वेयर के तौर पे भी देखा जाने लगा। अच्छा, इस साड़ी को डिजाइन और स्टाइल किया था भानु अथैया जी ने। उन्होंने स्पेशली ये प्री प्लीटेड साड़ी बनाई थी जिसके साइड में जिप लगी हुई थी। ये इस तरह से डिजाइन की गई थी ताकि मुमताज जी इस पे कम्फर्टेबली डांस कर पाए। उसका वो गोल्डन बॉर्डर, उसका वो लंबा पल्लू, उफ तौबा, एंड द वे मुमताज जी कैरीड इट, वाओ। इस तरह की साड़ी ड्रेपिंग के बाद ही उस टाइम के कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स या फैशन डिजाइनर्स ने साड़ी के साथ अलग एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
4: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
3: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
4: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन।
9: इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

चलिए अवतार फिल्म की बात करते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं नहीं, जेम्स कैमरन वाली अवतार नहीं, मैं तो 1983 की फिल्म अवतार की बात कर रही हूँ, जिसमें राजेश खन्ना अवतार किशन बनते हैं और उनका ये किरदार बहुत पॉपुलर हुआ था। किरदार क्या, फिल्म भी हिट हुई थी और इसका पता क्या असर पड़ा था, क्योंकि इसका सब्जेक्ट वो था ना कि बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, बूढ़े माँ बाप को, इंस्पिरेशन फॉर बागबान फिल्म एज वेल। तो ये फिल्म देखने के बाद बहुत से लोगों ने ना अपनी वसीयत बदल दी थी, जहाँ पर उन्होंने अपने घर जो है बच्चों के नाम कर दिए थे, वो वापस बच्चों के नाम से हटा के अपने नाम करवा लिए कि ये बच्चे भी हमारे साथ ना ऐसा कर दे जैसा कि इस फिल्म में किया गया। इस फिल्म का ना गाना बड़ा सही था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने लिखा, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री।
4: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन। ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट। ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट।
3: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम। अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: 89.6, 89.6.
2: It's hot.
0: Purani jeans with Jaru.

ओए कितना क्यूट गाना कसौटी फिल्म का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये गाना मेनली प्राण साहब पे पिक्चराइज्ड है। भाई प्राण साहब अपने उसूलों के इतने पक्के थे ना, उनकी एक फिल्म थी 1972 की बेईमान, जिसके लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, लेकिन उन्होंने ये अवार्ड लेने से मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से उस साल बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड पाकीज़ा फिल्म को मिलना चाहिए था, जबकि उसकी जगह इन्हीं की ये जो फिल्म थी ना बेईमान, इसके म्यूजिक को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला। ये बात प्राण साहब और इनफैक्ट बहुत से लोग उस टाइम पे, मैं आपको कहूँ, उनके गले नहीं उतरी थी, तो इन्होंने अपना अवार्ड भी लेने से मना कर दिया। होते हैं कुछ लोग, क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसके बारे में काफी सीरियसली सोचते हैं और उसके लिए खड़े भी होते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: किशोर कुमार की आवाज में ये जिंदगी, जीवन, लाइफ की फिलॉसफी वाले गाने ना, इनका एक अलग ही लेवल है। हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं क्या, ये वाला गाना हो गया एक पिया का घर फिल्म का जो हमने अभी सुना, ये जीवन है, फिर जीवन के हर मोड़ पे, वो आई थिंक कौन सी फिल्म का था, झूठा कहीं का आई थिंक, फिर एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, फिर रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, इम्तिहान फिल्म का, देन जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, और इन गानों का पप्पा गाना, वो गाना अब हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची
1: जिंदगी।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो तेजिंदर जी।
3: हाँ जी,
4: हाँ जी तेजिंदर जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
3: जी, हाँ जी किया था।
4: हाँ, ये तेजिंदर जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
3: कितना लेट मिलेगा
4: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
3: हाँ जी,
4: एक सेकंड। हाँ इमरजेंसी का है सर, 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
3: 3.5 महीने बाद?
4: हाँ जी
3: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
4: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, आपके आसपास कोई है तो नहीं?
3: नहीं कोई नहीं है।
4: मैं ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
3: अच्छा।
4: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के ना, आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
3: क्या बोल रहा है भाई, कौन? हेलो।
4: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप बल्कि वो बंदा ही।
3: हेलो।
4: हाँ बोलिए बोलिए।
3: क्या बोल रहा भाई?
4: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
3: मैं बोल रहा हूँ,
4: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
3: क्या बोल रहा है? क्या
4: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
3: नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
4: यार। आप मेरी
3: तेजेंद्र जी, नहीं
4: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा, 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा, 1.5 महीने के लिए आपका नाम यूज कर रहा है। आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो?
3: नाम बता पहले तू, कौन रहा है?
4: ये लकी डॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया। भाई तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

कैसा बद्दुआ देता हुआ गाना है ये अनामिका फिल्म का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अबे दिल टूटे आशिक के दिल से बद्दुआ तो निकलेगी यार, क्यों नहीं निकलेगी। अच्छा इसी बात पे हार्ट ब्रेक पे एक शायरी सुनो, हफीज जलंधरी नाम के शायर हैं, उनका ये शेर है, ओ दिल तोड़ के जाने वाले दिल की बात बताता जा, अब मैं दिल को क्या समझाऊं मुझको भी समझाता जा। वैसे मुझे ना हार्ट ब्रेक के गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन पता है कौन से वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिन पे आप डांस कर पाओ, जैसे कि ये वाला जो हम सुनने वाले हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
4: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
3: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
4: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

टीना मुनीम, इनकी डेब्यू फिल्म थी 1978 की देश परदेश। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन इससे पहले इनकी डेब्यू फिल्म 1977 की दूसरा आदमी भी हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो हुआ कुछ यूं था कि ऋषि कपूर ने टीना मुनीम को कहीं देखा था और उस वक्त दूसरा आदमी फिल्म की कास्टिंग चल रही थी, तो उन्होंने यश चोपड़ा साहब जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे उनको टीना मुनीम का नाम रेकमेंड किया। टीना मुनीम स्क्रीन टेस्ट के लिए आई, लेकिन उस टाइम ना तो ऋषि कपूर मौजूद थे ना यश चोपड़ा साहब। यश चोपड़ा साहब की टीनी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन इससे पहले इनकी डेब्यू फिल्म 1977 की दूसरा आदमी भी हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो हुआ कुछ यूं था कि ऋषि कपूर ने टीना मुनीम को कहीं देखा था और उस वक्त दूसरा आदमी फिल्म की कास्टिंग चल रही थी, तो उन्होंने यश चोपड़ा साहब जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे उनको टीना मुनीम का नाम रेकमेंड किया। टीना मुनीम स्क्रीन टेस्ट के लिए आई,

0: लगी, और इस वजह से दूसरा आदमी फिल्म में उनका जो रोल है वो कुछ फाइनल नहीं हो पाया। एंड देन उस रोल के लिए नीतू सिंह को साइन किया गया था।
1: पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ,
0: और सुनेंगे इसी फिल्म का गाना जो है क्या बात क्या बात क्या बात।
1: आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1971 की फिल्म मेला का ये गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में दोनों खान भाई थे, फिरोज खान संजय खान, और दोनों ने फिल्म मेकर को एक कॉम्बो डील दी थी कि आप हम दोनों को साइन कर लो तो पैसे कम कर देंगे। नहीं मतलब ऐसा कुछ हुआ था, बट फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी। वैसे 90s में भी एक मेला नाम की फिल्म आई थी जिसमें दो खान भाई थे, आमिर खान फैजल खान, ये भी बुरी तरह पिट गई थी। वो तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर थी। तो फिल्म बनाने वालों को ये लेसन लेना चाहिए कि जब भी आप मेला नाम से फिल्म बनाए तो उसमें दो भाइयों को साइन ना करें। खैर कमिंग बैक टू पुरानी फिल्म, 1970 की एक और डिजास्टर फिल्म थी इश्क पर जोर नहीं, लेकिन इसका म्यूजिक क्या चला था। और इसका ये गाना कंपोज्ड बाय SD बर्मन, रिटन बाय आनंद बख्शी, संग बाय लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: It's hot. मिर्ची फ्रेश माल।
1: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।

इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।